0: भाष्यति। इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारतयात्रा वर्तते। सा श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह षोडशे भारत जापान वार्षिकशिखरसम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। इदं शिखरसम्मेलनम् उभयोर्देशयोः कृते द्विपक्षीयसहयोगस्य समग्रक्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिकहितस्य क्षेत्रीयवैश्विकविषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुमेकं प्रकृष्टम् अवसरं प्रदास्यति। उत्तराखण्डराज्यस्य मदरसा शिक्षाप्रणाल्याम् अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं सञ्जातम्। अस्याः नूतनव्यवस्थायाः अन्तर्गतम् उत्तराखण्डमदरसा शिक्षापरिषद् पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति। सहैव राज्यस्य सर्वाः अल्पसङ्ख्यकशैक्षणिकसंस्थाः एकेन विनूत्नेन तन्त्रेण सञ्चालिताः भविष्यन्ति। अद्य जुलाई मासस्य एकदिनाङ्कतः उत्तराखण्डमदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20-26 तथा उत्तराखण्ड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावलिः 20-19 इत्येतेः सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्यप्रशासनेन उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अन्तर्गतम् एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्रतन्त्रस्य अन्तर्गतम् उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर

जी हाँ साथियों, भरत व्यास जी ने क्या शानदार ये पंक्तियाँ लिख दी और इसमें एक संदेश भी हमें दिया कि वो आँख हमें देखती है। और ये जो पूरे गीत में उन्होंने एक रेखा चित्र सा खड़ा कर दिया, यूँ लगता है हम ऊपर से देख रहे हैं इस धरती को। क्या शानदार कैनवास एक हमारे लिए तैयार कर दिया गया है ईश्वर के द्वारा। और साथियों, वाकई ये कुदरत लाजवाब है। सुबह की हवा, पत्तियों की सरसराहट और चहचहाते पशु पक्षी, ऐसा लगता है कि कुदरत हमसे बहुत कुछ कहना चाहती है और ये बातें हमारे मन को छू जाती हैं। तो शुरुआत जब ऐसे प्यारे शब्दों के साथ हो तो फिर पूरे दिन की थकान भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगी। बस इस प्यारी सी सुबह को हमेशा ही एक ऐसे ही हसीन बनाते हुए हम जागें और इसे ताज़ा बनाए रखने के लिए हम कोशिश करें। जी हाँ, हमारी इन सब बातों में कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। आज से एक बहुत खास दिन की शुरुआत हो रही है, आज यानी 1 जुलाई से हमारे पूरे देश में मनाया जा रहा है वन महोत्सव सप्ताह। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि हितेंद्र भाई रेडियो पर सुबह सुबह ये वनों की, ये महोत्सव की क्या बात है और ये कहां से आ गई। तो साथियों, बात बड़ी सीधी सी है। पेड़ हैं तो ये सांसें हैं, पेड़ है तो ये ठंडी छांव है, और पेड़ हैं तभी तो सावन की वो रिमझिम फुहारें आने वाली हैं जो हमारे तपते दिलों को ठंडक पहुंचाती है। जी हाँ दोस्तों, पुराने जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि एक पेड़ लगाना 100 गायों को दान देने या कई कुएं खुदवाने जैसा पुण्य वैसा काम होता है। कहते थे ना, क्योंकि एक पेड़ जब बड़ा होता है ना तो वो सिर्फ लकड़ी या फल नहीं देता, वो अनगिनत परिंदों का घर बनता है, राहगीरों को सुस्ताने का ठिकाना देता है और सबसे बड़ी बात, हमें जीने के लिए वो साफ हवा जिसकी कीमत आज के दौर में हम अब समझने लगे हैं। आजकल हम कंक्रीट के जंगल तो खड़े करते जा रहे हैं और बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, लेकिन सोचिए वो सुकून, वो आराम हमें मिलता है जो एक नीम या छोटा सा कोई भी दरख्त हो उसकी छांव में बैठने का जो आनंद है वो नहीं ले पाते हम। तो साथियों, वन महोत्सव सप्ताह सिर्फ बातें नहीं करनी है, हमें और आप सबको मिलकर एक छोटा सा संकल्प लेना है। ये जो 7 दिन है ना, इनमें से कोई भी एक दिन अपनी पसंद का चुन लें, अपने आसपास से मिट्टी लाकर एक पौधा अवश्य

लगाएं, चाहे पार्क में हो या चाहे घर में हो। पौधा कोई भी हो, चाहे नीम का हो, बरगद का हो, पीपल का हो, या घर आंगन के लिए तुलसी जी का हो, या एलोवेरा का पौधा ही क्यों ना लगाएं, लगाएं। सिर्फ पौधा लगाना ही बहादुरी नहीं है, असली बात तो ये है कि हम जब छोटे पौधे को एक बच्चे की तरह ध्यान रखेंगे तभी हम सफल होंगे। और उसे समय पर पानी देना, उसे मौसम से या पशु पक्षियों से बचाना, उसका ख्याल रखना जब तक कि वो जड़ें न पकड़ लें। सोचिए हमारे हाथ का लगाया पौधा कल अगर बड़ा पेड़ बना तो उस पर आकर कोई चिड़िया बैठेगी, चहचहाएगी, तो हमारे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। उसकी कोई कीमत नहीं है, है ना साथियों? तो बस हमारे साथ ये संकल्प लीजिए और मुस्कुराइए और खो जाइए इस गीत में।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: दोस्तों, अभी इस अंतराल पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुदरत की, हरियाली की और वन महोत्सव की। लेकिन जानते हैं, इस खूबसूरत कुदरत का मज़ा जब तक अधूरा है जब तक हमारे आसपास सफाई न हो। तभी तो आज हमारे सवेरे में एक और बहुत आवश्यक और बहुत खूबसूरत बात आपके सामने लेकर आया हूं मैं। जी हाँ, स्वच्छता से पर्यटन का विकास, यानी साफ सफाई से कैसे निखरता है हमारा शहर का चेहरा। अच्छा साथियों, एक बात बताइए, जब हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? बिल्कुल सही बात, हम सीधा फर्श की ओर देखते हैं, हर कोने की ओर झांकते हैं और फिर लग जाते हैं काम पर। कोना कोना चमका देते हैं, सोफे के कवर बदलते हैं, जो मकड़ी के कहीं भी जाले दिख रहे हैं उसे साफ करते हैं। क्यों? ताकि बाहर से आने वाले मेहमान के सामने हमारे घर की एक अच्छी छवि बने, वो खुश होकर जाए। तो साथियों, जब हम अपना घर साफ रखना चाहते हैं, अपनी तारीफ चाहते हैं, तो फिर हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारा देश, पूरी दुनिया, यहाँ भी तो पर्यटक आते रहते हैं, वो भी तो हमारे मेहमान। तो जब घर साफ है तो फिर इन सब को साफ रखने की जिम्मेदारी भी तो हमारी हुई ना। सोच कर देखिए, हमारे पास देखने के लिए क्या नहीं है। आलीशान और ऐतिहासिक किले, और हमारे शहर की बात करें तो खूबसूरत हवेलियाँ, और जो रेतीले धोरे हैं वो भी एक मखमली सा एहसास देते हैं। हमारी बहुत

दोस्तों, हमने बात करी वन महोत्सव की और अलावा इसके पेड़ लगाने की, साथ ही अपने आसपास स्वच्छता की। साथियों, सबसे बड़ी बात इनमें से निकल कर आती है कि हमारे आसपास का पर्यावरण या कुदरत का जो भी हिस्सा है वो स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, साफ रहे। ये बातें साथियों बहुत आवश्यक है, इन्हें कल पर नहीं टाला जा सकता। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि 3-4 दिन से मौसम एक अजीब सी गर्मी, एक उमस, और हर बार यही सुनने को मिलता है कि 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। एक दिन में एक अजीब सा सन्नाटा हो जाता है, बारिश का तो कोई ठिकाना ही नहीं लगता। कभी भी सूखा, कभी भी असम, इतनी बरसात आ जाती है। अक्सर हम एसी या कूलर की हवा खाते कहते, इस बार यार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, इस बार बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है। हमारी पुराने दादी नानी के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। रात को छतों पर भी लोग सोते थे तो सौंधी सौंधी ठंडी हवा चलती थी, चैन की नींद आती थी। आज बिजली, पंखे, कूलर, एसी, हम सभी ये जला कर छोड़ देते हैं। तो साथियों, यहीं से थोड़ा सा सोचें कि बिजली यदि हम आवश्यकता हो उतनी ही काम में लें, कमरे से निकल रहे हैं तो बंद कर दें। बिजली बचेगी तो कोयला कम जलेगा और पर्यावरण बचेगा। बाज़ार में कहीं जा रहे हैं तो प्लास्टिक की थैलियाँ लेते रहते हैं, सब्जी ली तो वो अलग थैली देता है, कोई और सामान खरीदा तो वो अलग देता है, तो उनको ना कहें। पर्यावरण में ये छोटे छोटे योगदान बहुत काम आ सकते हैं। अपने साथ थैला लेकर जाएं, जैसे, और पानी को व्यर्थ न बहने दें। पानी की एक एक बूंद कीमती है। ब्रश करते समय या दाढ़ी बनाते समय नल को खुला न रखें। जो हमारे आसपास, कोशिश करें पेड़ लगाएं, और जो आसपास लगे हुए हैं उन्हें कोई तोड़े नहीं, काटे नहीं, उसकी सार संभाल करें। सारा काम सरकार को नहीं करना होता है साथियों, हमें भी करना है। कुदरत हमें बहुत कुछ देती है और सब मुफ्त में देती है, और सबसे बड़ी बात, सांस लेने को जो हवा, पीने को पानी, रहने को ज़मीन, बदले में बस हमसे क्या चाहती है, बस एक थोड़ा सा सम्मान, देखभाल। बस, तो अपना फ़र्ज हम कभी ना भूलें।

यादों के चिरागों को आंखों में महफूज रखना, आगे रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, कल फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। आज का सुप्रभात कार्यक्रम आपकी सेवा में हितेंद्र व्यास ने प्रस्तुत किया। अब आज्ञा दें, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत, पंकज उदास के स्वर में। फिल्म का नाम है संगीत।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए, आप सुनिए राजन साजन मिश्रा का गाया हुआ ये गीत। फिल्म का नाम है सुर संगम।

अभी आपने सुना मन्ना डे और उषा मंगेशकर का गाए हुए गीत, फिल्म का नाम था दिल की राहें। कार्यक्रम लीजिए आप, सुनिए यशोदास और हेमलता का गाए हुए ये गीत, फिल्म है चित्र।

ये था फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात। कृपया

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपए, गोवा में 406 रूपए और केरल में 401 रूपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम

0: एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
1: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $27 अरब से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद

0: से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
1: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
0: सभी मदरसों को UDIS यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
3: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है PM की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर PM ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली NCR को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्म

0: निर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। विकसित भारत जी राम जी स्कीम कम्स इनटू फोर्स अक्रॉस द कंट्री टुडे, रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एमजी नरेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स टू इरानियन प्रेसिडेंट, स्ट्रेस्ड नीड फॉर कंटिन्यूड एफर्ट्स टू सिक्योर लास्टिंग पीस इन वेस्ट एशिया एंड सेफ गार्डिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड कॉमर्स। जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाए ताकाइची to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football, and India's men's cricket team to begin their 5-match 2020 international series against hosts England today. Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Vikasit Bharat Ji Ram Ji Act 2025 will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry said that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country.
3: The VBG Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. This enhanced employment guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, providing

हवेली आरी धरती या तो नगर सेठ रो धाम है, ऊंडी सोच ओ हिवड़ो साचो उनरी खास पहचान है। मीठा मिसरी सा लोग सुहावना, बी कानेरी धरती री बात बताऊला। भोर उगेरे साथे मिनका काम करे मन भावना, नारी मायड़ बूढ़े डारा माण नहीं है झुकावना। घर घर मिनखपणो घणेरा लोग निभावना, घर घर मिनखपणो घणेरा लोग निभावना। बीकानेरी धरती री बात बताऊला। करनी माता सदा सहायक छतर छाया रे वसी, पुनरासर बाबो को डाणो चारू कोनी डोलसी। लखमी नाथ मारा बी कौनेरा चानना, लखमी नाथ मारा बी कौनेरा चानना। बी कानेरी धरती री बात बताऊला। 1500 पे ताड़वे थाप्यो बी को देश, आखा बीज रो दिवस गणो है सगड़ो रो विशेष। गिग

मुला आगे राखो इन धरती ने सगड़ो शू आ कहवणो भारत भोमरी हिवड़े आ तो बात सदा ही मौनणो धर्म करम शू बात बनेला मारा भायला धर्म करम शू बात बनेला मारा भायला बी काणे री धरती री बात बताऊला हाथ जोड़ अर्जी मारी है नगर बिकौने रिपेर जासू भेदभाव भूला कर चाल्या जीसा पेला चाल।

अणरी ऊंचा ऊंचा धोरा पे जब सूरज डो उग जावे है, चारू कानी पंछी नाचे सगड़ा मंगल गावे है। खेत खेत जद हल ले चाले हर किसान हो।

रात हो, मैं तो वारा प्राण हो। आ धरती मार वाड़रिया, धरती हिंद वाणरी, बादलिया गहरावे अठे, बिजली साथे चमके, छम छम करता बूंदा बरसे, हिवड़े ने हर खावे है इन पा।

सौरभ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर घनश्याम व्यास के राजस्थानी गीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चंदन दास के गाए कुछ भक्ति गीत।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री चंदन दास के गाए कुछ भक्ति गीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में। 2 दिन के सम्मेलन का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में आज से लागू। केंद्र सरकार ने संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु, 20 से अधिक लोग घायल और पांचना बांध पानी बंटवारे को लेकर पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा विवाद सुलझा। संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस 2 दिन के सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI enabled data driven and secure digital governance रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर NCEG प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न नवाचारों की लॉन्चिंग होगी। सम्मेलन के दूसरे दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस

0: इस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सम्मेलन के बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। केंद्र सरकार ने वीबीजी रामजी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पारिश्रमिक दर बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि पहली बार 300 रुपए प्रतिदिन का अंतरिम आधार पारिश्रमिक दर लागू किया गया है और सुनिश्चित किया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत कोई भी अधिसूचित दर इससे कम नहीं हो। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर वीबीजी रामजी के तहत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार मजदूरी दर में 10% से अधिक की औसत बढ़ोतरी हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। वीबीजी रामजी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आज से काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। दोपहर 1 से 2 बजे तक विश्राम काल रहेगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल यानी मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजार में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। इस बीच तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 183.50 रुपए की कमी की है। भारतीय तेल निगम के अनुसार संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमतों में कटौती के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटकर 2,930 रुपए हो गई है। इस निर्णय से रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों और खाद्य तथा पेय पदार्थों के कारोबार से जुड़े व्यवसायों को राहत मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर धनावड़ा के पास आज अलसुबह एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार ने आकाशवाणी को बताया कि ये दुर्घटना एक स्लीपर बस के ट्रक से टकरा जाने के बाद उसमें आग लगने से हुई। आग के बाद कई यात्री जलती हुई बस में फंस गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल यात्रियों में से अधिकांश मध्य प्रदेश और ऋषिकेश के हैं।
2: हरिद्वार से इंदौर जा रही थी बस, और जाते टाइम इनका कोई ट्रेलर से एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ ये तो इन्वेस्टिगेशन बाद मालूम पड़ेगा। 35-36 सवारी होनी चाहिए इसमें, इसमें 22 इंजर्ड हुए हैं और 8 की कैजुअल्टी है। ये 2:30 से 3 बजे के बीच का है, सुबह रात को मतलब। और जो इंजर्ड थे उनको प्राथमिक उपचार चल रहा है, उनका वो ठीक है, मतलब ज्यादा सीरियस नहीं है। पर जो

0: कैजुअलिटी हुई है वो काफी दुखदायी है। हो सकता है ट्रला से टकराई हो या ड्राइवर को झपकी आई हो, ये तो अभी फाइनली इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। करौली जिले के पांचना बांध के पानी बंटवारे को लेकर पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा विवाद सुलझ गया है। जयपुर में हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद लिखित समझौता हुआ। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म उपस्थित रहे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि विभाग 7 दिन के भीतर पानी छोड़े जाने की तारीख तय करेगा। इसके बाद नहरी तंत्र की जांच के लिए जल प्रवाह शुरू किया जाएगा। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि 2100 MCFT क्षमता वाले पांचना बांध से लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इस समझौते से क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
2: समझौते के तहत गुडला क्षेत्र के 21 राजस्व गांवों को लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि पांचना बांध के कमांड क्षेत्र की नहरों में भी जल प्रवाह शुरू होगा। जल संसाधन विभाग 7 दिन के भीतर पानी छोड़ने की तिथि तय करेगा, जिसके बाद नहरी तंत्र की तकनीकी जांच और टेस्टिंग शुरू की जाएगी। सरकार ने नहरों की मरम्मत के कार्य को भी गति देने का भरोसा दिलाया है। गौरतलब है कि कमांड क्षेत्र के किसान नहरों में पानी छोड़ने और कैचमेंट क्षेत्र के किसान लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से अपने गांवों को पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलनरत थे। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने से जिले के हजारों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। बांकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
1: और अब मौसम। हवाओं में नमी के प्रभाव से प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी का असर है। दिन के समय कड़ी धूप के साथ उमस भी लोगों को प्रभावित कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। 43.6 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग ने अगले 4-5 दिनों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में। 2 दिन के सम्मेलन का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में आज से लागू। केंद्र सरकार ने संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु, 20 से अधिक लोग घायल। और पांचना बांध पानी बंटवारे को लेकर पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा विवाद सुलझा। संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं श्री सतीश दहरा के गाए कुछ लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री सतीश देहरा के गाए लोकगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1318वां अंक।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
1: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
1: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा

0: आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं
0: जी,
1: ताकि कोई जानकारी ना छूट जाए।
0: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
1: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूं, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है,
0: जी।
1: मूल्यवान भी है, रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
0: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है। तो
0: जी।
1: विमलेश जी, आप जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
0: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
1: कोयला तो पृथ्वी पर बना लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
0: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार, अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
1: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं।
0: जी
1: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
0: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
0: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीटरॉइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
1: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए।
0: जी
1: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
0: जी जी जी सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
1: जी, सच्चाई यह है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
0: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
1: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
0: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
1: और वो ये है श्रोताओं, कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं, तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं, लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
0: जी
1: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में
0: आपके हाथ के

0: की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
1: जी तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
4: आह, क्या बात है
6: मैम।
4: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
5: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
5: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
5: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
5: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
7: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
8: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
4: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
5: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
4: अब तुम्हें इसे हमेशा याद

0: रखना है, ठीक
1: है?
2: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
5: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: जी मैम।
2: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
2: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
5: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
5: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
5: धन्यवाद सर।
2: धन्यवाद मैम।
6: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला

0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
2: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई, नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
2: ए, ए, ए, ए, कहाँ बड़े चले आ रहे?

0: अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
1: जानते हैं भाई जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
0: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
1: अरे भाई ये भी कोई
0: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
1: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
0: अच्छा भाई बोलो क्या बात है, बोलो।
1: मैं बोलूं? अच्छा, देखो भैया तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
0: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
2: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
0: अच्छा और मुखिया जी क्या फाके करे? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया है
3: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
4: मुखिया जी
5: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
4: माफ कीजिएगा लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
5: ओहो, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
4: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
5: तो भरने दो।
4: गांव के सभी लोग, औरतें बच्चे और मर्द, गांव छोड़कर जा रहे हैं।
5: अरे तो जाने दो।
4: लेकिन मुखिया जी इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
5: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है और ये हमारी बांसुरी भी है।
4: लेकिन मुखिया जी,
5: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
4: जी मगर
5: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
6: मुखिया जी
5: अब क्या है?
6: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
5: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
4: मुखिया जी
5: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है
4: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
5: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
4: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
5: नालायक डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यहीं रहूंगा।
4: जैसी आपकी मर्जी।
5: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है, दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं?

आ जाऊं मैं ये पानी में डूब रहा हूं मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे कोई है अरे बचाओ बचाओ मुझे, अरे मैं डूब रहा हूं मैं। ये क्या ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़ आखिर पहुंच गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1318वां अंक। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मेरी वेब 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर सुबह के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में, फिल्म का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाश वाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाश वाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को

0: बांधा।
1: तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना।
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

आपने सुना अजय अतुल का गाया हुआ गीत, फिल्म का नाम था धड़क। अगला गीत हमने लिया है फिल्म बाजीगर से। गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने।

ओम समित का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से सुन रहे हैं। कुमार सानू और अलका याग्निक को सुनिए, फिल्म है राजा रानी।

अभी आपने सुना अंकित तिवारी का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम था आशिकी टू। अंकित तिवारी को ही सुनिए, फिल्म है एक विलेन।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बज चुके हैं। सुनते हैं फिल्म संगीत।

हेमलता के स्वर में फिल्म अखियों के झरोखों से। अभी आपने ये गीत सुना, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप तो ऐसे न थे फिल्म से मोहम्मद रफी के स्वर में अभी आपने ये गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में फिल्म शोर से अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से अभी आपने एक गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है एतबार। स्वर हैं आशा भोसले और भूपेंद्र के।

इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 12 बजने को हैं, सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल धीरज सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की।

0: की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 12:05 हो चुके हैं। सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात 9:30 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे। चर्चा का विषय है, 10 बजे आप स्टूडियो से सुन पाएंगे फिल्म संगीत। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे विश्व मोहन भट्ट गिटार पर राग यमन, जिसमें तबले पर संगत देंगे रहमान खान।

रात 8:45 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे समाचार। संध्या 9 बजे न्यूज एट 9, 8:30 पर स्टूडियो से आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। 8 बजे आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत। 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। 7 बजे ग्रामीण मित्र सुन पाएंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज की प्रस्तुति देंगे अश्विनी व्यास और दीवानदान रत्नु, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे जुलाई माह के कृषि बागवानी व पशु पालन संबंधित कार्य, पशु टीकाकरण, विकसित भारत, पक्के किले का महत्व, सुनेंगे लोकगीत, मौसम की जानकारी।

शाम 6:30 पर जयपुर केंद्र से प्रसारित होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर जिले की चिट्ठी। 6:45 पर जयपुर केंद्र से ही आप सुन पाएंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 6:00 दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 6:05 पर स्टूडियो से आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत। 5:05 पर युवा मित्र सुन पाएंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज की प्रस्तुति देंगे गौतम गौड और दिशा भाटी, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे वृक्ष मित्र बने, पर्यावरण को सहेजें, वन महोत्सव सप्ताह, युवा और सामाजिक परिवर्तन।

दोपहर 1:05 पर महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम महिला जगत। आज की प्रस्तुति देंगी किरण शर्मा और सपना व्यास। दोपहर 2:00 दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे मिड डे न्यूज। 2:15 पर दोपहर समाचार।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 12:10 हो चुके हैं। सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में सुनते हैं मुल्तान खान और साथियों के द्वारा गाए लोक गीत।

सीमा मिश्रा और सतीश देहरा के स्वर में अभी आपने ये लोकगीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत। स्वर है सीमा मिश्रा और संजय भागी का।

इसी के साथ लोक संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 12:40 हो चुके हैं। सुनते हैं फिल्म संगीत।

पल पल दिल के पास तुम रहती हो। फिल्म ब्लैकमेल से किशोर कुमार के स्वर में अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है कभी कभी। स्वर हैं मुकेश के।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

किशोर कुमार के स्वर में फिल्म कुदरत से अभी आपने ये गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर हैं लता मंगेशकर के और फिल्म का नाम है आँखें।

0: कभी कभी।
1: इसी के साथ फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को है, सुनते हैं जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा है कि डिजिटल इंडिया विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने आज सोशल मीडिया पर कहा कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया अभियान ने गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा देशवासियों के जीवन को अधिक सुगम बनाया है। उन्होंने कहा कि ये पहल देश में सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल सशक्तिकरण को नई दिशा दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ई गवर्नेंस से प्रशासन और जनसेवाओं की पहुंच में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान और यूपीआई जैसी पहलों से आम नागरिकों को बहुत सुविधा मिली है तथा छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी कारोबारियों को भी इसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री आज जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एआई और साइबर सिक्योरिटी प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा की गई कई महत्वपूर्ण पहलों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राज्य में एआई और मशीन लर्निंग एआईएमएल नीति लागू की गई है, साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल जन शिकायतों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: राजस्थान संपर्क आज प्रदेश भर में जन अभियोग निवारण का प्रभावी मंच बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म पर हर महीने 2.5 से 3 लाख शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो रहा है। मैं खुद राजस्थान संपर्क पर आने वाली जन शिकायतों को सुनता हूं और हर शिकायत का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित भी करता हूं। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती है, बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्मार्ट परियोजना, ई मित्र, व्हाट्सएप सेवाओं तथा राजस्थान इनोवेशन चैलेंज पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। इस पहल में विश्वास व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे गांव में आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे, महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबी ग्रामीण भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आज सुबह हुए हादसे की विस्तृत जांच के लिए जिला प्रशासन ने जांच दल का गठन किया है। जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा ने दल को दुर्घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि आज अल सुबह धनावड़ा के पास एक स्लीपर बस और ट्रेलर की टक्कर के बाद आग लगने से बस में सवार 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे। घायलों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यान आज से पर्यटकों के लिए बंद हो गए हैं। मॉनसून और वन्य जीवों के प्रजनन काल को देखते हुए 30 सितंबर तक पर्यटन गतिविधियों पर अस्थायी रोक रहेगी। इस दौरान वन्य जीवों के लिए अनुकूल वातावरण

0: बनाए रखने और वन क्षेत्रों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाली जिले के जवाई वन्यजीव क्षेत्र में 1 अक्टूबर से फिर से सफारी का संचालन हो सकेगा। इसी तरह सरिस्का टाइगर रिजर्व का कोर एरिया भी पर्यटकों के लिए बंद होगा, हालांकि बफर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां जारी रहेंगी। उधर सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू हुआ पर्यटन सत्र कल समाप्त हो गया। बीते पर्यटन सत्र में 6,77,000 से अधिक देशी विदेशी पर्यटकों ने राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया, जिससे राज्य सरकार को लगभग 70 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। 1:05 हो चुका है। आरंभ होता है महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम महिला जगत। आज की प्रस्तुति दे रही हैं किरण शर्मा और सपना व्यास।

0: महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों का स्वागत है हमारे पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत में। आज आपका स्वागत कर रही है आपकी अपनी दो सखियां किरण शर्मा और
1: मैं सपना व्यास। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: सपना, क्या कभी हमारे मन में आया कि हमारी जो मिट्टी है वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है?
1: बिल्कुल किरण, इस मिट्टी के गुण धर्म का ही फल है हमारी फसलें, फल फूल और अनाज।
0: सच में हम ये तो जानते हैं कि इस मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम मिट्टी के महत्व को, मिट्टी की मांग को भूल रहे हैं।
1: तो क्यों ना किरण फिर से लौट चलें उस बचपन की मिट्टी की महक की ओर।
0: जब बारिश की बूंद मिट्टी पर गिरती और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती तो हम कैसे खींचे चले जाते उस मिट्टी की तरफ जो हमारे घर के खुले आंगन के बाहर बिखरी रहती है ना।
1: और हाँ किरण, हम कैसे बारिश के थमने का इंतजार करते हैं और फिर सब बच्चे मिलकर बनाते हैं मिट्टी के वो गरंदे को
0: और जिसमें सामग्री होती पेड़ की सूखी पत्तियां, सूखी डालियां, क्योंकि माँ कहती हरे भरे पेड़ की डाली को नहीं तोड़ना चाहिए, उसमें भी जान होती है। और हम डर के मारे हाथ भी नहीं लगाते, भले हमें डराने के लिए माँ ने ऐसा कहा पर इस डर से प्रकृति का संरक्षण भी तो हो जाता।
1: बिल्कुल सच में कहा किरण, के उस वक्त हम बारिश के मौसम में जुट जाते और पेड़ लगाने, और ये होड़ रहती थी ज्यादा पेड़ कौन लगाएगा।
0: और इस काम में हमारा पालतू कुत्ता भी तो मिट्टी खोद कर हमारी मदद करता है ना, और गाय का बछड़ा कुलेल मारता कैसे प्रकृति का आनंद उठाते हमारी तरफ भागता।
1: और सच में किरण, ये पेड़ पौधे, वन प्राणी, पशु पक्षी ही तो हमारे जीवन का आधार है और प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं ये। क्यों?
0: बिल्कुल सपना, इसके बिना जीवन संभव ही कहाँ। वन वर्षा लाने में मदद करते हैं, साथ ही मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और भूजल स्तर भी बनाए रखते हैं।
1: और औषधियाँ भी तो जंगलों से प्राप्त होने वाले पौधों से बनाई जाती है।
0: और लकड़ी, फल, शहद, गोंद, बांस सभी तो हमें वनों से ही मिलते हैं।
1: लेकिन किरण, आज वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण वर्षा कम होती जा रही है और धरती का जो तापमान है वो बढ़ता ही जा रहा है। और देखो ना, अभी तो कितना तापमान बढ़ जा रहा है। क्यों?
0: बिल्कुल, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी तो सपना इससे बढ़ जाता है। तो आवश्यक है अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। और बिल्कुल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलने वाले वन महोत्सव का उद्देश्य भी सपना यही तो है।
1: बिल्कुल, तो चलो कुछ काम करते हैं, हटकर काम करें, समाज और देश की निस्वार्थ सेवा करें। जिस धरती माँ ने सौंपा हमें सब कुछ, उसकी गोद में कुछ अर्पण करें, साफ कुछ मन का दर्पण करें।
0: बगीचे में पौधे अनेकों बोए, अब चलो वृक्षारोपण करें। खड्डा खोद भूमि से क्षमा याचना करें, शायद कुछ अन्य जीव भी रहते होंगे, हम होशियार रहकर उनका आदर करें।
1: पढ़े मंत्र श्लोक उच्चारण करें, धरती माँ की गोद में वृक्षारोपण करें, वृक्षो रक्षति रक्षिता की प्रार्थना करें, फिर खाद मिट्टी डाल हाथों से, हस्त कपोलों से।

0: जल की वर्षा करें।
1: ओम शांति का पाठ करते वृक्ष को दुलार दें, प्यार भरा एक नाम दें। और हाँ बहनों, जब हमारी धरती माँ सुंदर और हरी भरी होगी ना, तभी तो हम गा पाएंगे दिल से जुड़े सुंदर गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: सपना, हमने बात की वृक्षारोपण की, वन संरक्षण की, तो ये कार्य तभी संभव है जब भारत की हर नारी शिक्षित हो, क्योंकि नारी अगर शिक्षित होगी ना तभी वो पर्यावरण के प्रति भी सजग रहेगी और बच्चों के भविष्य के बारे में भी कुछ अच्छा कर पाएगी, सोच पाएगी, है ना।
2: वो वाली बात है ना किरण, कि एक पुरुष को शिक्षित करोगे तो कि एक पुरुष ही शिक्षित होगा, और लेकिन अगर एक नारी को साक्षर करोगे तो पूरा परिवार और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी साक्षर होगी।
1: बिल्कुल सही कहा सपना, साक्षर नारी साक्षर देश। सच कहूं तो जब तक हमारे देश की आबादी यानी हमारी बहनें, माताएं और बेटियां साक्षर और जागरूक नहीं होगी तब तक देश की तरक्की की कल्पना भी करना अधूरा जैसे, है ना।
2: बिल्कुल किरण, और आज के समय में साक्षर होने का मतलब सिर्फ अपना नाम लिखना सीख पाना ही नहीं है किरण, आज के समय में साक्षर होने का मतलब है अपने अधिकारों को जानना, बैंक के काम काज को समझना और अपने पैरों पर खड़ा होना। जब एक महिला पढ़ी लिखी होगी ना किरण, तो वो अपने घर के बजट को भी बेहतर रूप से संभालेगी और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई है उस पर भी वह पूरा ध्यान दे पाएगी।
1: बिल्कुल सपना, और सपना मैंने तो अधिकतर गाँवों में देखा है कि जब ग्रामीण बहनें साक्षर होती है ना तो वो साक्षर होके लघु उद्योगों से भी जुड़ जाती है, और इतना ही नहीं स्वयं सहायता समूह भी बनाती है और खुद का रोजगार शुरू कर देती है। यानी वो सिर्फ घर नहीं चलाती है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, और पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला

0: कर भी चल सकती है ना।
1: बिल्कुल। और किरण, एक बात जो बहुत जरूरी है कि एक साक्षर नारी कभी बेबस या लाचार नहीं होती।
0: बिल्कुल।
1: समाज में जो रूढ़िवादिता है, जो कुरीतियां हैं या जो गलत परंपराएं चल रही है ना, तो एक पढ़ी लिखी बहन उनके खिलाफ आवाज
0: उठा सकती है।
1: तो वो जानती है कि कानून ने उसे क्या अधिकार दिए हैं। बस मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहूंगी जो इस वक्त हमें हमारे कार्यक्रम में सुन रही है, उनसे ये गुजारिश है कि अपने घर की जो बेटियां हैं, अपनी बहुओं को पढ़ने का सीखने का पूरा मौका दो उन्हें। उन्हें पिंजरे में बंद मत कीजिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए पंख दीजिए।
0: बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही सपना। और कहते हैं कि नारी का साक्षर होना पूरा समाज में जो फैला हुआ अंधकार है ना, उसको मिटाकर ज्ञान का दिया जलाने जैसा है। जब नारी आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। और हाँ बहनों, सिर्फ बेटियों को शिक्षित और साक्षर करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि आप बेटी और बेटे में को समान मानते हुए दोनों को साक्षर भी कीजिए और संस्कारित भी कीजिए। क्योंकि अगर बेटा सिर्फ साक्षर हो जाएगा, आपका घर चलाएगा या वंश वृद्धि करेगा, इतना ही नहीं।

0: कर ज्ञान का दिया जलाने जैसा है। जब नारी आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। और हाँ बहनों, सिर्फ बेटियों को शिक्षित और साक्षर करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि आप बेटी और बेटे में को समान मानते हुए दोनों को साक्षर भी कीजिए और संस्कारित भी कीजिए। क्योंकि अगर बेटा सिर्फ साक्षर हो जाएगा, आपका घर चलाएगा या वंश वृद्धि करेगा, इतना ही नहीं बल्कि वो आगे समाज और देश का अच्छा सोच सके, और जो प्रत्येक महिला है, बेटी है, उसके लिए भी उसकी नज़र सही हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका संस्कारित नहीं, बिल्कुल सुसंस्कारित होना चाहिए, बिल्कुल
1: होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की तुमने किरण। तो चलिए हमारी इन सभी प्यारी हिम्मती और सशक्त नारियों के जज्बे को, उनकी साक्षरता की इस खूबसूरत सफर को सलाम करते हैं। और लेकिन अब वक्त कह रहा है ना किरण कि कानों में थोड़ा संगीत का रस खोला जाए।
0: बिल्कुल।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: सखियों, अभी हम बात कर रहे थे महिला साक्षरता की और पर्यावरण संरक्षण की, तो इसमें महिलाओं का क्या क्या योगदान हो सकता है विस्तृत रूप से जानते हैं इस वार्ता के माध्यम से, जिसका विषय है पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान। वार्ताकार है श्रीमती मीना सैनी।
3: घटा टोप घनघोर हो बारिश या सूखा हो हाहाकारी, दोनों ही परिस्थितियों में कटना फटना और दरकना पड़ता है धरा ही को। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, सूखा, सभी परिस्थितियों में धरा ही जहां धारिणी होती है, नारी भी एक शक्ति है, कर्मठता है, उत्पादक है, संरक्षक है। नारी समाज की संजीवनी है, वह संतति जन्म, समाजीकरण, संरक्षण, पालन पोषण, चरित्र निर्माण करने वाली तथा सांस्कृतिक विरासतों का हस्तांतरण करने वाली है। इस शक्ति के कार्योपासना श्रम साधनों की चर्चा करेंगे तो एक महाकाव्य लिखा जा सकता है इस विषय पर, परंतु आज मेरे कथन का विषय वस्तु केवल पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान ही है। बातों बातों में चाहे महिला को परिवार की धुरी कहकर संबोधित किया जाता रहा है, परंतु मेरे विचार में यह शक्ति केवल परिवार के पोषण संरक्षण तक ही सीमित नहीं है। और हाँ, यह विचार मात्र मेरा ही नहीं है, प्रसिद्ध चिंतक कार्ल मार्क्स के अनुसार सृष्टि में बड़े से बड़ा बदलाव महिलाओं के बिना नहीं हो सकता। महिलाओं में यह जागृति, यह विचारधारा कोई हाल ही में नहीं पनपी है। महिलाएं वैदिक काल से ही पर्यावरण संरक्षण की पक्षधर रही हैं। तुलसी, पीपल, वट, केला आदि वृक्षों का पूजन, सिंचन, सूर्य चंद्रमा के उदय अस्त की समझ, उनको अर्घ्य देना, जलवा पूजन, कुआं पूजन, भूमि पूजन और नैमित्तिक स्नान आदि भारतीय संस्कृति को अक्षुण रखने वाली परंपराओं का पालन करने में महिलाएं सदा सर्वदा आगे रही हैं। स्वस्थ पर्यावरण सभी प्राणियों के जीवन चक्र का अहम हिस्सा है, इसके बिना सुचारू जीवन चक्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अतः इसके समुचित संरक्षण का मानव मात्र का तो प्रथम कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो सुविकसित मस्तिष्क का धनी है। तो इस प्रकार 5 तत्वों से मिलकर बने प्राणी का 5 तत्वों यानी जल, भूमि, वायु, अंबर और अग्नि को प्राणी मात्र के लिए सकारात्मक बनाए रखने का उत्तरदायित्व मानव का हो जाता है। और समाज में इस दायित्व को हम महिलाएं भली भांति निभा भी रही हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले जो नाम आता है वह है राजस्थान का सुप्रसिद्ध खेजड़ली आंदोलन। सन 1730 में जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में तत्कालीन राजा के कारिंदों द्वारा किए जा रहे खेजड़ी वृक्षों की कटाई के कार्य का विरोध सर्वप्रथम एक नारी शक्ति ने ही किया था। वह महिला थी अमृता देवी बिश्नोई। खेजड़ी का पेड़ न काटा जा सके इसके लिए वह खेजड़ी से चिपक कर खड़ी हो गई। उनकी 2 पुत्रियों ने भी उनका अनुसरण किया, परंतु राजाज्ञा का हवाला देकर उन महिलाओं के बलिदान के साथ खेजड़ी

के पेड़ भी कटने लगे। यह देखकर सारे ग्रामीण विरोध स्वरूप आगे आए। इस आंदोलन में 363 लोग शहीद हुए और महिला द्वारा आहूत इस आंदोलन में 69 महिलाओं का भी बलिदान हुआ। यह शहादत व्यर्थ नहीं गई, वृक्षों की कटाई रोकनी ही पड़ी। पर्यावरण हानि पर मुखर विरोध का एक और उदाहरण है रेनी गांव उत्तराखंड की 27 महिलाओं का प्राणोत्सर्ग। यहाँ भी वनों की कटाई रोकने के लिए, वन संपदा का संरक्षण करने के लिए इसी गांव की महिला गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन का सूत्रपात किया गया। इस चिपको आंदोलन का घोष वाक्य है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। वी एक्ट फॉर एनवायरमेंटल जस्टिस संस्था की सह संस्थापक भारत की ही एक और प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षक का नाम आता है, वो है मेधा पाटकर। हरित राजनीति की समर्थक मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, टिकाऊ पर्यावरण संरक्षण को लेकर महिलाएं कितनी सजग हैं, इसका एक और भारत का ही उदाहरण है चंडीगढ़ की मधुसरीन, जिन्होंने नाडा गांव की घटना से प्रेरित होकर नाडा चूल्हे, जिसे निर्धूम चूल्हा भी कहा जाता है, का आविष्कार किया ताकि पर्यावरण के साथ साथ पहाड़ों मैदानों में जलाऊ लकड़ी बटोरने ढोने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। सौर कुकर या सौर चूल्हा भी पर्यावरण संरक्षण में रुचि रखने वाली महिलाओं द्वारा काम लिया जाने वाला उपकरण है जो ऊर्जा का उत्पादन एवं बचत करता है, साथ ही यह वातावरण को प्रदूषित होने से भी बचाता है। तो बचत, उत्पादन एवं संरक्षण का यह कार्य करने वाला उपकरण महिलाओं का पसंदीदा उपकरण है। राजस्थान का खेजड़ली आंदोलन वन्य जीवन, जंगल, वृक्षों के संरक्षण तथा प्रकृति की ओर वापसी की अवधारणा के लिए विसल ब्लोअर साबित हुआ है। राजस्थान जहां मान्यता रही है सिर सांठे रूंख बचे तो भी सस्तो जान, प्रकृति प्रेम का इससे शानदार उदाहरण और क्या हो सकता है। कुछ ऐसे ही कार्य को अग्रसर भारत की एक और सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था, जिसे चिपको संस्था भी कहा जाता है, वह है दसौली ग्राम स्वराज्य मंडल। एक अध्ययन के अनुसार इस चिपको संस्था ने 1,500,000 नए पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा था और बताया जाता है कि इस वन संवर्धन कार्यक्रम में जीवित रहने वाले पेड़ों की संख्या 85% है, क्योंकि पेड़ों की देखरेख में गांव की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। महिलाएं द्वारा आहूत एक और आंदोलन का नाम आता है नवधान्या आंदोलन। यह भी जैविक विविधता के संरक्षण के लिए महिला केंद्रित आंदोलन है। इसकी शुरुआत भी भारत की प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर वंदना शिवा द्वारा की गई थी। पृथ्वी तथा जैव संरक्षण के प्रति समर्पित डॉक्टर वंदना शिवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन महिला पर्यावरण एवं विकास संगठन WEDO की भी सह संस्थापक हैं। चर्चा भारत से बाहर गई है तो कतिपय अंतर्राष्ट्रीय महिला पर्यावरण विदों का उल्लेख करना भी समीचीन होगा। अमरीकी जीव विज्ञानी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयासरत लेखिका एवं अधिवक्ता राचेल कार्सन को मैं सर्वप्रथम नामांकित करना चाहूंगी। वन्य जीवन पर कीटनाशकों का उपयोग कितना विनाशकारी है, इस पर उनके द्वारा किए गए अध्ययन और प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग ने 60-65 वर्ष पूर्व ही अमेरिका में पर्यावरण जागरूकता के प्रति लोगों में काफी हलचल पैदा की थी। यह अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA की सदस्य भी रही हैं। इसी प्रकार नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजी गई केन्या की महिला जीव विज्ञानी वांगारी मथाई भी ग्रीन बेल मूवमेंट की विसल ब्लोअर रही हैं। इन्हें पेड़ों की महिला भी कहा जाता है। इनके अलावा ग्लोबल वार्मिंग पर आवाज उठाने वाली कनाडा की शीला वॉट क्लाउटियर का योगदान भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति ये समर्पित हैं, इन्हें भी 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ओजोन परत में छेद की अवधारणा पर पहली बार 1974 में आवाज उठाने वाले शेरवुड रोलैंड की सहयोगी भी एक महिला ही थी, नाम था मारियो मोलिना। यह फेहरिस्त तो बहुत लंबी हो सकती है। कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और टिकाऊ पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी का स्वास्थ्य, मिट्टी की उर्वरता, ग्लोबल वार्मिंग, रेगिस्तानीकरण, पहाड़ों का क्षरण, कृषि पद्धतियों की नवीनतम जानकारी व उपयोग,
कहां नहीं है महिला।

0: महिलाओं का हस्तक्षेप एवं योगदान। कृषि की नवीनतम जानकारी की हेतु छात्राओं की उपस्थिति इसी बात का संकेत है कि महिलाएं पर्यावरण के प्रति कितनी सजग हैं, जागरूक हैं। फिर वह चाहे हरियाणा का चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हो या बीकानेर राजस्थान का स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। यह तथा ऐसी ही असंख्य संस्थानों में अध्ययनरत छात्राएं मेरी बात का प्रमाण है कि महिलाएं स्वस्थ पर्यावरण के लिए प्रयासरत हैं। दादी नानी की कहानियां ही प्रसिद्ध है, दादा नाना की नहीं। दादी नानी द्वारा छोटे बालकों में कहानी कथन के माध्यम से बचपन में ही जीव हिंसा न करने, पशु पक्षियों, वनों का संरक्षण करने का वैचारिक पौधारोपण कर दिया जाता है। पुराणों की, पंचतंत्र की कहानियां, जातक कथाएं कहते हुए भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का हस्तांतरण कथाओं, गीतों और लोरी के माध्यम से मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। दुर्लभ प्रजातियों के पशु पक्षियों का, वृक्षों का ही नहीं वरन प्राणी मात्र की संरक्षा सुरक्षा का पाठ महिलाओं द्वारा पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जेनरेशन के लिए बेहतर पर्यावरण उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयासरत महिलाओं के लिए गौरव की बात यह बनती है कि वर्ष 2001 को भारत में महिला वर्ष घोषित किया गया था। वर्ष 2003 महिला सशक्तिकरण के रूप में जाना गया और 8 मार्च प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जाना जाता है। आखिर महिलाओं की भूमिका को पहचान मिल रही है, फिर भी ग्रीन रिकवरी की आवश्यकता को देखते हुए प्रकृति के संरक्षण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पर्यावरणीय नीतियों पर चर्चा करने, आकलन करने वाले निकायों में महिलाओं की अहम भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए, उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए। अब वह बात अलग है कि महिलाएं ऐसे निकायों के बाहर रहकर भी पर्याप्त सक्रिय थीं, हैं और रहेंगी, क्योंकि महिलाएं किसी मीटिंग, सभा, शिविर की मोहताज नहीं हैं। महिलाएं निरंतर प्रतिदिन एक्टिव हैं अपने लक्ष्य के प्रति, फिर चाहे वह खाद्य सुरक्षा बढ़ाने वाले किचन के डब्बों की सार संभार हो या स्वच्छ जल की व्यवस्था परिवार के लिए भी और पशु पक्षियों के लिए भी। इस संदर्भ में जल के सदुपयोग की भी चर्चा करनी होगी। ड्रेनेज वाटर का बेहतर उपयोग किचन गार्डन के रूप में करने के लिए महिलाएं सदैव ही लालायित रहती हैं और किचन वेस्ट जैसे फल, सब्जियों के छिलकों आदि से पेड़ पौधों की खाद बनाने का काम भी वे उत्साहित होकर करती आ रही हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति की क्षमताओं के सुधार एवं वृद्धि में और प्रकृति की सुरक्षा में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को नकारा नहीं जा सकता।
1: सखियो, अभी आपने सुनी वार्ता। वार्ता का विषय था पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान। वार्ताकार थी श्रीमती मीना। तो बहनों, ये तो था हमारा पर्यावरण के प्रति कर्तव्य, पर भारतीय सेना के प्रति भी तो हमारा कर्तव्य कुछ है। तो आइए करते हैं आभार व्यक्त अपनी भारतीय सेना का कैलाश खेर जी के इस गीत के माध्यम से।
2: नमस्कार, मैं हूँ कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सके कई बार जीवन से या जीवन की परेशानियों से इतने दुखी हो जाते हैं कि अपने भाग्य को कोसने लगते हैं या फिर ईश्वर को कि हमें ऐसा जीवन मिला, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं, ये वो आदि आदि, है ना। पर क्या कभी हमने ये विचार किया है कि ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है इस अमूल्य शरीर को देकर?
1: बिल्कुल सही कहा किरण कि हम इस स्वस्थ और तंदुरुस्त शरीर के माध्यम से क्या कुछ नहीं कर सकते, बस ज़रूरत है तो सिर्फ हौसलों की और कुछ कर गुजरने की चाह की। आपने कभी देखा होगा किरण के ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है जो शरीर से दिव्यांग हो या आंखों से आंखों से इस संसार को जो देख नहीं पा रहे हैं या सुनने या बोलने में असक्षम हो, तो उनको देखकर क्या कभी हमारे मन में ईश्वर को धन्यवाद देने की इच्छा नहीं हुई होगी?
0: बिल्कुल हुई ना सपना, कि ईश्वर आपने हमें बिल्कुल स्वस्थ और पूर्णता के साथ इस संसार में भेजा। और हाँ बहनों, कभी आपने अपने आसपास ऐसा व्यक्ति भी देखा या सुना होगा ना जिसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हो, उसकी उम्र अभी कम है, जीने की चाह भी है और परिवार को उसकी आवश्यकता भी, पर उनके पास किडनी की व्यवस्था नहीं, लाखों रुपए लिए बैठे हैं पर किडनी डोनर नहीं मिल रहा। तो सखियो ऐसी स्थिति देखकर तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर का एक एक अंग कितना कीमती है।
1: बिल्कुल किरण, और हमारी किडनी, हार्ट या फेफड़े, लीवर, ये सब कुछ तो हमारे लिए अमूल्य है।
0: अमूल्य है। और सखियों, लीवर की जब बात आती है तो लीवर जो कि शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है, इसे स्वस्थ रखना बहुत ही आवश्यक है।
1: बिल्कुल किरण, क्योंकि ये शरीर के लिए अनेक कार्य करता है, जैसे खाना पचाना, शरीर में टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकालना है, शरीर को एनर्जी देना, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, चयापचय को मजबूत बनाना, पित्त का निर्माण करना और इसका

0: स्राव करना, बहते रक्त को रोकने वाले तत्वों का निर्माण करना आदि।
1: बिल्कुल सखियों, आपने जाना कि कितने ज्यादा काम है लीवर के। तो आज मैं आपको लीवर की इतनी जानकारी दे रही हूँ क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मतलब
0: सुनने में भी आता है ना
1: कि अधिकतर जो लोग हैं वो फैटी लीवर से परेशान है, है ना। और ये स्थिति ऐसी है जिसमें लीवर की कोशिकाओं में सामान्य से अधिक वसा जमा होने लगती है। जी हाँ, इसका मुख्य कारण है खराब खान पान, बदलती जीवन शैली, और सबसे बड़ा कारण है मोटापा और डायबिटीज, या फिर कई होते हैं ना लोग की शराब का सेवन करते हैं तो उसके कारण भी फैटी लीवर हो सकता है।
0: और किरण, इसमें शुरुआती चरणों में स्पष्ट लक्षण तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर पेट के दाहिने हिस्से में दर्द या भारीपन होता है, भी ज्यादा थकान रहती है, भूख कम लगने लगती है, या अचानक वजन का कम होना, या आंखों की त्वचा का पीला पड़ना आदि ये लक्षण हो सकते हैं इसके।
1: तो हमें वक्त पर डॉक्टरी सलाह लेनी है ना सपना,
0: बिल्कुल,
1: अपनी दिनचर्या को नियमित करना है और इसके साथ जंक फूड से दूर रहना है। और जो जो भी लोग घर के सदस्य हैं या कोई शराब का सेवन कर रहे हैं तो उनको भी उससे दूर रखना है, और हेल्दी डाइट फॉलो करते हुए नियमित व्यायाम भी करना है, तभी हम स्वस्थ दुरुस्त रह पाएंगे। और हाँ बहनों, हमारी हर शारीरिक समस्या या रोग का निदान संभव हुआ हमारी चिकित्सा व्यवस्था के कारण। और आज है चिकित्सा दिवस, जो चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए 1 जुलाई यानी आज के दिन मनाया जाता है।
0: जी हाँ सखियों, ये दिन देश के महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिमी बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में समर्पित है। संयोग से 1 जुलाई 1882 का उनका जन्मदिन और 1 जुलाई 1962 को उनकी पुण्यतिथि भी है।
1: जी हाँ बहनों, भारत सरकार ने उनके चिकित्सा क्षेत्र और समाज में दिए अमूल्य योगदान को सम्मानित करते हुए 1991 में आधिकारिक तौर पर इस दिवस को मनाने की शुरुआत की। और इस साल की थीम भी रखी है बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर्स। तो बहनों, हमारे सभी डॉक्टर्स और जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं कर्मचारी, उनका धन्यवाद करते हैं और ये प्यारा सा गीत सुनते हैं

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: सपना, आज स्टूडियो आते आते मुझे थोड़ा लेट हो गई, और जानती हो क्यों?
2: अरे किरण, ये तो मैं पूछ ही रही थी तुम्हारे से, और लेकिन कह रहे अभी प्रोग्राम चल रहा था मैंने कहा ये पूछ नहीं पाई। क्या हुआ, रास्ते में ट्रैफिक था या घर में कोई स्पेशल तैयारी चल रही थी तुम्हारी?
1: ट्रैफिक तो बहाना है सपना, असल ट्रैफिक जाम हो गया घर के दरवाजे के अंदर ही।
2: अरे क्या हो गया?
1: हुआ यूं कि आज मेरे घर के सबसे छोटे बच्चे यानी देवर जी का बेटा है, वो जिद पर अड़ गया कि मैं स्कूल बस में स्कूल नहीं जाऊंगी। उसका पहला दिन भी था स्कूल का, और अड़ गया कि मुझे पापा के साथ ही जाना है नई बाइक पे। और बेचारे देवर जी करे तो करे क्या, क्योंकि उनको ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, और आपको पता है कि घर के जो पुरुष है वो ऑफिस के लिए लेट हो रहे होते हैं सुबह सुबह, सबको जल्दी रहती है, तो कोई तैयार नहीं था उसको छोड़ने के लिए, और वो जिद पर अड़ा ही रहा कि मुझे जाना तो घर के सदस्य के साथ ही है।
2: भाई ये तो हर घर की कहानी है किरण। भाई आज के दौर में बच्चों की जिद देखो ना माता पिता के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई है। और किरण सच कहूँ तो आज हम भी अपनी सखियों और श्रोताओं से इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि भाई बच्चों की हर जिद पूरी करना कितना सही है और कितना गलत है।
1: बिल्कुल सपना, आजकल पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे ने कुछ मांगा है तो हमें तुरंत नहीं दिया तो कहीं वो हमें बुरा माता पिता नहीं कहे, या फिर बच्चा हीन भावना का शिकार तो नहीं हो जाए। बस इसी चक्कर में जायज और नाजायज दोनों जिद हम उनकी पूरी करने लग गए।
2: बिल्कुल सही कहा किरणी। यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि प्यार करने और लाड प्यार में बच्चे को बिगाड़ने के बीच एक बहुत बारीक लाइन होती है किरण। जब हम बच्चे की हर जिद के आगे घुटने टेक देते हैं तो हम अनजाने में उसका नुकसान ही कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
2: और बच्चे को ये लगने लगता है कि दुनिया में जो चीज हमें रोने और चिल्लाने से हासिल की जा सकती है।
1: बिल्कुल सपना, ये तो बहुत बड़ी बात कही तुमने। असल में बच्चा बड़ा होता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो अगर होता है तो वो जो जैसे उसको डाला गया है उसी में वो ढलता जाता है। अगर हमने उसकी छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा किया तो आगे चल के ये उसके लिए बहुत ही मतलब बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि आगे उसको ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, कॉलेज भी जाना है, तो अगर वो ऐसे अपनी इच्छाओं की पूरा होने की जिद में अड़ा रहा
2: तो वो सहन नहीं कर पाएगा,
1: नहीं सहन कर पाएगा, और कहीं ना कहीं वो एकांकी होकर रह जाएगा और डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है बच्चा।
2: सही बात है। और माता पिता सोचते हैं कि बच्चा इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है। किरण, जब बच्चा छोटा होता है ना तो बच्चों में धैर्य यानी सब्र की आदत डालनी बहुत जरूरी है। अगर बच्चे ने किसी खिलौने की या किसी ऐसी चीज के लिए जिद करते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं कि उसके लिए तुरंत हाँ मत कीजिए, उन्हें थोड़ा रुकना सिखाइए। उस समय आप कह सकती है कि बेटा इस बार जन्मदिन में हम तुम्हें ये चीज़ दिलाएंगे, या पापा की अगले महीने सैलरी आएगी तो ये आपको चीज़ दिला देंगे।
1: मतलब सपना, तुम्हारे कहने का मतलब है कि छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा नहीं करना है, बल्कि थोड़ा उसको इंतजार करवाना है। जैसे हमारे हम रहते थे जॉइंट फैमिली में तो हमें कोई भी चीज हाथों हाथ नहीं मिलती थी, बल्कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि टावर सुधरता है कसाले से और सब्जी सुधरती है मसाले से। तो हमें थोड़ा अपने को कठोर करते हुए बच्चे पर अनुशासन रखते हुए अंकुश भी लगाना
2: बहुत खूबसूरत बात कही तुमने किरण। यानी बच्चों को चीजें नहीं, संस्कार और समय दीजिए। उन्हें हाँ सुनने की जितनी आदत है उतना ही सहजता से ना स्वीकार करना।

0: कुछ तो अपनी निशानियां रख जा, इन किताबों में तितलियां रख जा, लोग थक कर हार कर न लौट आए, रास्तों में कहानियां रख जा।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही सपना। और हाँ बहनों, कल फिर मिलेगी आपकी अपनी सखियां, आपके साथ रूबरू होगी और करेगी मन की बातें, चर्चाएं और साझा करेगी नगमे भी। तो फिर मिलने की उम्मीद के साथ मैं किरण शर्मा और
0: मैं सपना व्यास
1: लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना विशेष कार्यक्रम महिला जगत, और आज की प्रस्तुति दे रही थी सपना व्यास और किरण शर्मा। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं। सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज़।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBG राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविक

0: सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं

0: विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
0: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
3: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु

0: फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
1: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
2: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल XH या AR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडिया वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मरु चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म मनचली से किशोर कुमार के स्वर में अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर हैं लता मंगेशकर के, फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में फिल्म वारिस से अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कुमार शानू और साधना सरगम के स्वर में फिल्म जुर्म से अभी आपने ये सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मरु चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब यहीं समाप्त होती है। सायंकालीन सभा में 5:30 बजे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। संध्या के 5 बजने वाले हैं। हमारे आज के प्रसारणों की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा के आरंभ में सुनिए हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। उन्होंने बताया कि परियोजना से लगभग 75 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 98 लाख व्यक्ति दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे 4 से 6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल पूंजी लागत 7,145 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह परियोजना कानपुर और कबराई के बीच निर्बाध उच्च गति संपर्क प्रदान करेगी, साथ ही सागर, भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए आगे की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में

0: समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। इसके अलावा समिति केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श करेगी। समिति ने गृह मंत्री को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक अग्रिम जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की है। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। कल मैक्सिको, फ्रांस और नॉर्वे के अंतिम 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना युववाणी कार्यक्रम।

0: पेड़ों की छाव में जीवन मुस्कुराता है, हर पत्ता प्रकृति का संदेश सुनाता है। जो हरियाली को बचाने का संकल्प लेते हैं, वही आने वाले कल को सुंदर बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौतम।
1: और मैं हूं दिशा। दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसे विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। यह विषय केवल प्रकृति और पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, हमारी आने वाली पीढ़ियों और धरती के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। आज का हमारा विषय है वृक्ष मित्र बनिए और पर्यावरण को सहेजिए।
0: दोस्तों, जब हम सुबह की ताजी हवा में सांस लेते हैं, जब हम किसी पेड़ की छांव में कुछ पल आराम करते हैं, या जब हम चारों तरफ फैली हरियाली को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति के उस सुंदर उपहार का अनुभव जरूर करते हैं, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन इस प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे वृक्ष।
1: बिल्कुल गौतम, और पेड़ पौधे हमारे जीवन के सच्चे साथी जो हैं। वे केवल हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि हमारे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, तापमान को

0: नियंत्रित करते हैं और धरती पर जीवन के संतुलन को बनाए भी तो रखते हैं। पेड़ हमारे लिए एक ऐसी धरोहर है दोस्तों, जो हमें बिना किसी अपेक्षा के लगातार कुछ ना कुछ देते रहते हैं।
1: दिशा, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारी कई जरूरतें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। हमारा भोजन, हमारा पानी, हमारी हवा और हमारा पूरा जीवन चक्र प्रकृति पर निर्भर करता है, और इस पूरे प्राकृतिक संतुलन में वृक्षों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।
0: सही कहा गौतम, पेड़ केवल हमारे आसपास की सुंदरता को नहीं बढ़ाते बल्कि ये पर्यावरण के रक्षक भी तो है। गर्मी के मौसम में पेड़ हमें ठंडी छांव देते हैं, बारिश के इस चक्र को संतुलित करने में मदद करते हैं, और देखो मिट्टी को सुरक्षित रखने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं।
1: और दोस्तों, अगर हम इतिहास और अपनी संस्कृति को देखें तो पाएंगे हमारे समाज में पेड़ों को हमेशा सम्मान दिया गया है। हमारे पूर्वज प्रकृति को केवल उपयोग की वस्तु नहीं मानते थे बल्कि उसे जीवन का हिस्सा समझते थे। गांव में बड़े बड़े पेड़ लोगों से मिलने जुलने, आराम करने और प्रकृति से जुड़ने का माध्यम हुआ करते थे।
0: ये तो तुमने सही कहा, क्योंकि पेड़ों का महत्व हमेशा से ही बना रहा है। पुराने समय में लोग जानते थे कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना ही तो जीवन को बेहतर बनाना है। लेकिन गौतम, आज तेजी से ये बदलती जीवन शैली के कारण कई बार हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं।
1: दिशा, समय के साथ साथ विकास भी जरूरी है।
0: वो तो है,
1: नई इमारतें बन रही हैं, शहर बड़े हो रहे हैं, नई सुविधाएं आ रही हैं, लेकिन विकास के साथ साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर विकास की दौड़ में हम प्रकृति को पीछे छोड़ देंगे तो इसका प्रभाव आने वाले समय में हमें ही झेलना पड़ेगा।
0: और आज हम बढ़ते प्रदूषण, बदलते ये मौसम और बढ़ते तापमान जैसी कई समस्याओं का सामना भी तो कर रहे हैं। इन समस्याओं के पीछे कई कारण हैं, लेकिन पेड़ों की कमी भी तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है।
1: दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं ना कि पर्यावरण की रक्षा करना केवल सरकार या बड़े संगठनों की ही जिम्मेदारी है, लेकिन वास्तव में यह हम सभी की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर छोटे छोटे प्रयास करके प्रकृति की रक्षा में योगदान दे सकता है।
0: बिल्कुल, पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत हमारे अपने घर और आसपास से हो सकती है। अगर हम अपने आसपास हरियाली बढ़ाने का प्रयास करेंगे, पौधे लगाएंगे, उनके देखभाल करेंगे, तो ये एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत ही तो होगी।
1: और दोस्तों, एक छोटा सा पौधा जब लगाया जाता है तो शुरुआत में वह बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ साथ वह पौधा एक बड़े वृक्ष के रूप में ले लेता है और कई लोगों के जीवन में उपयोगी बन जाता है। ठीक उसी तरह हमारे छोटे छोटे प्रयास भी भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
0: लेकिन गौतम, हमें ये भी तो समझना होगा कि केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसकी देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम उत्साह में पौधा तो लगा देते हैं लेकिन बाद में उसकी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि एक पौधा भी जीवन का हिस्सा है जिसे समय, पानी और देखभाल की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल दिशा। दोस्तों, वृक्ष हमें जीवन की एक सुंदर सीख भी देते हैं। एक पेड़ धूप सहता है लेकिन दूसरों को छांव देता है। वह खुद खड़ा रहता है लेकिन पक्षियों को आश्रय देता है, और इंसानों के जीवन के लिए जरूरी संसाधन प्रदान करता है। इसलिए हमें भी पेड़ों की तरह प्रकृति के प्रति जिम्मेदार और सहयोगी बनना चाहिए।
0: और आज के युवाओं की भूमिका भी पर्यावरण संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण है। युवा अगर जागरूक होंगे तो अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेंगे तो समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।
1: दोस्तों, आज के युवाओं की भूमिका भी पर्यावरण संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण है। युवा अगर जागरूक होंगे और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे तो समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। पर्यावरण को बचाने के लिए जरूरी नहीं कि हम हमेशा बड़े काम करें, कई बार छोटी आदतें भी बड़ा प्रभाव डालती है, जैसे पानी की बचत करना, पेड़ों को नुकसान न पहुंचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना।
0: और प्रकृति हमें हर दिन कुछ ना कुछ देती है। सूरज हमें ऊर्जा देता है, नदियाँ हमें पानी देती है और पेड़ हमें जीवन देने वाली हवा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं।
1: दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण कोई एक दिन का काम नहीं, यह एक निरंतर चलने वाली जिम्मेदारी है। अगर हम सभी मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो धरती को फिर से हरा भरा पाएंगे और सुंदर बनाया जा सकता है।
0: तो दोस्तों, याद रखिए, एक पेड़ लगाना केवल एक पौधा लगाना नहीं है बल्कि यह आने वाले भविष्य के लिए एक नई उम्मीद लगाना है।
1: तो दोस्तों, इसी सकारात्मक सोच के साथ हम सभी प्रकृति के मित्र बने और पर्यावरण को सहेजने का प्रयास करें।
0: तो आइए सुनते हैं एक मधुर गीत, और गीत के बाद हम फिर लौटेंगे नई जानकारी और नई चर्चाओं के साथ।

0: है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: दोस्तों, अब वक्त है आपके और

0: हमारे पसंदीदा सेगमेंट यानी कि क्विज टाइम का, जहां हम आपसे पूछेंगे दो सवाल और कार्यक्रम के अंत में देंगे उन्हीं सवालों के जवाब।
1: तो दोस्तों, हमारा आज का पहला सवाल है, वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद भारत द्वारा शुरू किए गए मानवीय मिशन का नाम क्या है।
0: और हमारा दूसरा सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब आपको कार्यक्रम के अंत में मिलेंगे।
1: दोस्तों, मौसम के बदलाव महसूस हो रहे हैं, कभी गर्मी की तेज धूप, कभी बारिश की बूंदे और कभी ठंडी हवाएं। प्रकृति का अपना एक अलग ही अंदाज होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है?
0: बिल्कुल गौतम, क्योंकि प्रकृति की सुंदरता और संतुलन को बनाए रखने में पेड़ों का महत्व बहुत बड़ा है। अगर हमारे आसपास हरियाली होती है तो वातावरण भी बेहतर लगता है और हमारा जीवन भी स्वस्थ रहता है।
1: सही कहा दिशा, आजकल हम विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, नई इमारतें बन रही हैं, शहरों का विस्तार हो रहा है, लेकिन इसी के साथ यह भी जरूरी है कि हम प्रकृति को ना भूलें।
0: और शायद इसी सोच के साथ हमारे देश में समय समय पर ऐसे अभियान चलाए जाते हैं जिनका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना होता है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण अभियान वन महोत्सव है।
1: दोस्तों, आज की हमारी लघु जानकारी जुड़ी है वन महोत्सव सप्ताह से, जो हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना होता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, और पेड़ हमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि वातावरण को शुद्ध बनाने, तापमान को नियंत्रित करने और धरती के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में हमारी मदद भी तो करते हैं।
1: अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे एक पेड़ केवल एक पौधा नहीं होता, एक बड़ा वृक्ष कई जीवों का घर होता है, कई लोगों के लिए छांव का सहारा होता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर पर्यावरण की उम्मीद होता है।
0: बिल्कुल गौतम, वन महोत्सव हमें ये संदेश देता है कि पेड़ लगाना केवल एक दिन का काम नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है।
1: दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति के छोटे से प्रयास से क्या बदलाव आएगा, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है।
0: सही कहा, अगर हम अभी से छोटे छोटे प्रयास शुरू करें तो हम आने वाले समय को बेहतर बना सकते हैं।
1: दोस्तों, प्रकृति हमें हमेशा देती ही रहती है, पेड़ हमें छांव देते हैं, हवा देते हैं, फल देते हैं और तो और हमारा जीवन सुंदर बनाते हैं। अब हमारी बारी है कि हम भी प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं,
0: क्योंकि एक पेड़ लगाना केवल आज के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए एक सुंदर उपहार होगा।
1: दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको वन महोत्सव सप्ताह के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा।
0: तो दोस्तों, इस वन महोत्सव सप्ताह पर हमें सिर्फ पेड़ नहीं लगाना बल्कि कुदरत को एक नई उड़ान देनी है और इस उड़ान की शुरुआत होती है एक सोच से, जो बिल्कुल वैसे ही हमारे दिलों में उतरती है जैसे कोई गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना।
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक सम्...

0: करता है
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: दिशा, आज रास्ते में मैंने कुछ बच्चों को देखा था। वे एक स्कूल की दीवार के पास खड़े थे। दीवार पर पहले बहुत कचरा रहता था, लेकिन उन युवाओं ने मिलकर न सिर्फ उस कचरे को साफ किया, बल्कि वहाँ सुंदर सुंदर पौधे भी लगा दिए और दीवार पर एक खूबसूरत सी पेंटिंग भी बनाई। उन्हें देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मेरे मन में आया कि इस बदलाव को क्या कहते हैं।
1: बिल्कुल गौतम, जब हम सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंजेस जैसे बड़े बड़े शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह कोई बहुत भारी काम है जो सिर्फ सरकारी या बड़ी बड़ी संस्थाएं कर सकती हैं। लेकिन सच तो ये है कि समाज में हर छोटा और अच्छा बदलाव हमेशा हमारे और आप जैसे आम युवाओं की सोच से शुरू होता है।
0: एकदम सही पॉइंट पकड़ा तुमने दिशा। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब दुनिया में यह हमारे देश में कोई बदलाव आया है उसकी कमान हमेशा युवाओं के हाथ में रही है। युवाओं के पास दो सबसे बड़ी ताकत होती है, एक तो उनके भीतर का जुनून और दूसरा नया नज़रिया। जहां बाकी लोग यह सोचकर चुप बैठे रहते हैं कि अरे बरसों से ऐसा ही हो रहा है तो इसे कौन ही बदलेगा, वहां एक युवा खड़ा होता है और कहता है नहीं, इसे मैं बदलूंगा।
1: हाँ गौतम, लेकिन कई बार हमारे कुछ युवा दोस्त ये सोचकर निराश हो जाते हैं कि मैं तो अकेला हूँ, मैं अकेले क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, समाज को बदलने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा लीडर बनने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने घर से, अपनी गली से और अपनी आदतों से शुरुआत करें तो वही सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन है।
0: ये तो बहुत गहरी बात कह दी तुमने दिशा। हमारे दोस्त सोच रहे होंगे कि भाई हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, जरा सोचिए, जब आप सड़क पर चल रहे हो और आपके हाथ में कोई कचरा हो तो उसे सड़क पर फेंकने के बजाय अपने जेब में रख लें या डस्टबिन दिखने पर उसमें डाल दें। यह भी एक सामाजिक बदलाव हो सकता है। किसी कमजोर या बुजुर्ग की मदद कर दें, उसके हाथ पकड़कर उसका कचरा डस्टबिन में डलवा दें, पानी की बर्बादी को रोकें, या यह सब समाज को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे कदम अपना सकते हैं हम।
1: बिल्कुल गौतम, और एक और बहुत जरूरी बात है शिक्षा और अवेयरनेस। आज के युवा पढ़े लिखे हैं, हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो अधिकारों के बारे में नहीं जानते या अंधविश्वासों में फंसे होते हैं। अगर हम अपने ज्ञान से किसी एक व्यक्ति की भी सोच को सही दिशा दे सके, उन्हें साक्षर बना सके या उसे उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर सके तो सोचिए समाज कितना आगे बढ़ेगा।
0: दिशा, युवा सिर्फ देश का भविष्य ही नहीं है, वे देश का वर्तमान यानी कि प्रेजेंट भी हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। शिकायतें तो हर कोई करता है, यह खराब है, वो खराब है, लेकिन असली युवा वही है जो शिकायत करने के बजाय खुद समाधान यानी कि सॉल्यूशन ढूंढे।
1: बिल्कुल सही कहा दोस्तों, समाज हमसे ही बनता है। अगर हम खुद को बदलेंगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा। हमारी एक छोटी सी नेक कोशिश पूरे देश में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। तो चलिए, आप खुद से वादा कर सकते हैं कि आप समस्याओं का हिस्सा नहीं बल्कि बदलाव का चेहरा बनेंगे।
0: लेकिन दोस्तों, जब देश का युवा अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर समाज को बदलने की ठान लेता है तो उसने अपनी जिद वहीं छोड़कर आग और तपस्या जो की है वो दिखाता है, जो सीमाओं पर खड़े जवान हमारे भारतीय सेना के जवानों में दिखती है।
1: बिल्कुल गौतम, सेना के इसी सुनते हैं कैलाश खेर की आवाज में।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

अच्छा दोस्तों, जब भी हम राजस्थान घूमने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बड़ी बड़ी महल, किले और रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, है ना? लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जो राजस्थान में है, पर वहाँ दूर दूर

0: तक सिर्फ नीला पानी और अनोखी चट्टाने दिखाई देती है।
1: बिल्कुल दिशा, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पाली जिले में स्थित जवाई बांध की। दोस्तों, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। अमृत सरोवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बांध का पानी पूरे इलाके के लाखों लोगों की प्यास बुझाता है और वहाँ के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
0: और गौतम, इसके सबसे कमाल बात जानते हो क्या तुम? इसके चारों तरफ अरावली की बहुत पुरानी ग्रेनाइट की चट्टाने हैं। वे चट्टाने दिखने में इतनी गोल और अलग अलग है कि ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, इस जगह का असली जादू यहाँ के पानी में नहीं है, बल्कि यहाँ के पहाड़ों पर रहने वाले खास मेहमानों में है।
1: हाँ दिशा, तुम जवाई के लेपर्ड्स यानी कि तेंदुओं की बात कर रही हो, है ना? दोस्तों, जवाई के लेपर्ड हिल्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आमतौर पर तेंदुआ एक बहुत ही खतरनाक और छुपा रहने वाला जानवर माना जाता है, लेकिन जवाई में कुछ ऐसा होता है कि जिसे पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। यहाँ तेंदुए और इंसान सदियों से एक साथ बिना किसी डर के रह रहे हैं।
0: यही तो सबसे खूबसूरत बात है गौतम। बांध के किनारे एक तरफ छोटे छोटे गांव बसे हैं और ठीक दूसरी तरफ उन्हीं गांवों से सटे चट्टानों पर तेंदुए आराम से घूमते दिख जाते हैं। और वहाँ जो रबारी समुदाय के लोग रहते हैं, वे इन तेंदुओं को अपना दुश्मन नहीं मानते। वे मानते हैं कि ये जानवर उनकी स्थानीय देवियों के रक्षक है, इसलिए वे इनके साथ एक गहरे विश्वास के साथ रहते हैं। अगर कभी कोई तेंदुआ उनके किसी पशु को नुकसान भी कर देता है तो वे गुस्सा नहीं करते, बल्कि उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है।
1: सच में दिशा, यह इंसान और जानवर के बीच एक अनोखी मिसाल है। और दोस्तों, जब आप यहाँ सफारी के लिए जाते हैं तो खुली जीप में बैठकर उन पहाड़ों के बीच से गुजरना एक अलग ही रोमांच देता है। सुबह सुबह जब सूरज उगता है और आप किसी चट्टान पर एक तेंदुए को शान से बैठ हुए देखते हैं, तो दोस्तों वह नजारा आप कभी भूल नहीं पाएंगे अपनी जिंदगी में।
0: और सिर्फ तेंदुआ ही नहीं गौतम, सर्दियों के मौसम में या दुनिया भर से हजारों विदेशी पक्षी अभी आते हैं। और जब जवाई बांध के नीले पानी पर राजहंस और पेलिकन पक्षी तैरते हैं तो वो नजारा बेहद खूबसूरत लगता है। साथ ही पानी के किनारे मगरमच्छों को देखना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है।
1: यानी दोस्तों, जवाई बांध एक ऐसी जगह है जहां आपको इतिहास भी मिलता है, रोमांच भी मिलता है और प्रकृति का एक सबसे शांत रूप भी देखने को मिलता है। अगर आप रोज की भागदौड़ से दूर कुछ पल सुकून के बिताना चाहते हैं तो जवाई बांध आपके लिए एक परफेक्ट जगह है।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कहीं घूमने का प्लान बनाए तो अपनी डायरी में जवाई बांध का नाम जरूर लिख लीजिएगा।
1: चलिए दोस्तों, बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक बहुत ही प्यारे और सुरीले गीत का।

0: दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है कि जब हम किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं या कोई गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं साथ साथ क्यों मौजूद होती है? कभी आपके दिमाग में ये ख्याल भी आया?
1: दिशा, मुझे तो लगता है कि हमारे ज्यादातर दोस्त यही सोचते होंगे कि यह कोई सरकारी नियम होगा जिसे फॉलो किया जा रहा है। पर सच बताऊं दोस्तों, इसके पीछे हमारे देश को, हमारी विविधताओं को आपस में जोड़कर रखने का एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कहानी है। और इस कहानी का नाम हमारे संविधान की किताब में आर्टिकल 343 है।
0: लेकिन गौतम, जब हम अनुच्छेद 343 पढ़ते हैं तो ऐसा ही महसूस होता है कि हमारे देश की कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम रोज सुनते तो हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें समझते बहुत कम है। देखो ना, हम सब हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि संविधान में हिंदी के बारे में वास्तव में क्या लिखा है?
1: सच कहूँ दिशा, भारत के बारे में ऐसे ही सवाल उस समय हमारे संविधान निर्माताओं के सामने थे, क्योंकि हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों के जाने के बाद हमारे देश के लीडर्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई थी। देश को एक सूत्र में बांधना था, लेकिन समस्या यह थी कि सरकारी कामकाज आखिर किस भाषा में किया जाए।
0: क्योंकि दोस्तों, हमारे भारत के बारे में एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध कहावत है ना, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। यानी हमारे यहाँ हर राज्य की अपनी एक बेहद खूबसूरत, समृद्ध और ऐतिहासिक भाषा है। जैसे उत्तर भारत के राज्यों में हिंदी बोलने और समझने वाले लोग ज़्यादा थे, वैसे ही हमारे दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में के राज्यों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और असमी जैसी भाषाओं का अपना एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है।
1: इसलिए दोस्तों, अगर किसी एक भाषा को अपना लिया जाता तो बाकी दोस्त नाराज हो जाते। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही समझदारी से काम लिया। उन्होंने अनुच्छेद 343 बनाया। अनुच्छेद 343 केवल भाषा का नियम नहीं है, बल्कि यह बताता है कि इतने विविध भाषाओं वाले देश में प्रशासन को कैसे व्यवस्थित रखा जाए।
0: तो दोस्तों, इसका पहला नियम हमें ये कहता है कि केंद्र सरकार

0: के कामकाज की भाषा हिंदी होगी। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा यानी कामकाज की भाषा कहा गया, ताकि बाकी भाषाओं का सम्मान भी कम ना हो।
1: दोस्तों जो हमारे भाई बहन हिंदी नहीं जानते थे उनकी सहूलियत के लिए इसी नियम में यह भी लिख दिया गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी काम में आती रहेगी।
0: और दोस्तों अब आते हैं इसके दूसरे सबसे बड़े पॉइंट पर। जब हम 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। जो राज्य या तो जो सरकारी कर्मचारी सिर्फ इंग्लिश या अपनी क्षेत्रीय भाषा जानते थे वे रातों रात तो हिंदी में काम नहीं कर सकते थे।
1: बिल्कुल, और इसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आर्टिकल 343 में एक टेम्परेरी ब्रिज यानी कि एक अस्थाई पुल बनाया गया। दोस्तों संविधान में साफ साफ लिखा गया कि संविधान लागू होने के दिन से अगले 15 साल यानी कि 1965 तक इंग्लिश का इस्तेमाल भी ठीक उसी तरह सरकारी कामों में होता रहेगा जैसे पहले होता आ रहा था। मकसद यह था कि इन 15 सालों में देश धीरे धीरे हिंदी को सीख लेगा और अपना लेगा।
0: लेकिन गौतम जरा कैलेंडर की तरफ देखो, वो 15 साल तो कब के बीत गए। 1965 के बाद आज हम 2026 में जी रहे हैं, लेकिन इंग्लिश तो आज भी हमारे हर ऑफिस डॉक्यूमेंट में, हर फॉर्म में, हर बैंक में वैसी की वैसी है। ऐसा क्यों?
1: क्योंकि दिशा, जैसे जैसे साल 1965 नजदीक आने लगा हमारे गैर हिंदी भाषी राज्यों के भाई बहन में एक डर बैठ गया कि अगर अब इंग्लिश पूरी तरह हट गई तो वे देश के कामकाज से कट जाएंगे। उनके इस भावना का सम्मान करते हुए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संसद में एक भरोसा दिया। बाद में बकायदा एक कानून बनाया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। इसके तहत यह तय किया गया दोस्तों कि जब तक हमारे गैर हिंदी भाषी राज्य खुद नहीं चाहेंगे तब तक इंग्लिश को हटाया नहीं जाएगा। वह हिंदी के साथ एक सहयोगी भाषा के रूप में हमेशा चलती रहेगी।
0: बिल्कुल, और एक तीसरी चीज जो हम रोज देखते हैं पर कभी ध्यान नहीं देते वो है नंबर। हम सरकारी कागजों में 1, 2, 3 लिखते हैं, वो भी इसी अनुच्छेद 343 की देन है।
1: दिशा, देखा जाए तो यह तो एक ऐसा नियम है जो हमें सिखाता है कि अपनी भाषा पर गर्व करना जितना जरूरी है दूसरों की सहूलियत का ध्यान रखना भी उतना जरूरी है।

0: समाचार की, जहां हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए जॉब अपडेट, जहां आप ऑनलाइन मोड पे आवेदन कर सकते हैं।
1: आज की रोजगार सूचना है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, जहां आरआरबी ने टेक्नीशियन पोस्ट के 6,557 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।
0: आयु सीमा पदों के अकॉर्डिंग 18 से 33 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है, और एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में दोस्तों बीएससी, डिप्लोमा, डिग्री इन इंजीनियरिंग ग्रेड 1 सिग्नल, मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई अप्रेंटिस ग्रेड 3।
1: और इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 29 जुलाई है, और टाइम खूब है, यह सोचकर देरी मत कीजिएगा।
0: और दोस्तों आवेदन प्रक्रिया, शुल्क सहित और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं।
1: दोस्तों आपको याद होगा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने दो सवाल पूछे थे, तो अब वक्त है उन्हीं के जवाब देने का।
0: तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल था, वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद भारत द्वारा शुरू किए गए मानवीय मिशन का नाम क्या है? उसका जवाब है
1: ऑपरेशन अमिस्ताद। और दोस्तों हमारा दूसरा सवाल था, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी?
0: जिसका जवाब है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में।
1: तो दोस्तों आज हमारे इस सफर में बातों और विचारों का कारवां बहुत ही खूबसूरत रास्तों से गुजरा,
0: पर दोस्तों घड़ी की सुइयां अब रुकने का इशारा कर रही हैं और समय की अपनी पाबंदी है, इसलिए इस महफिल को समेटने का वक्त हो चला है। आज के शो में हम आपके साथ और आपके विचारों के साथ बहुत मज़ा आया, फिर मिलेंगे कुछ और नई बातों के साथ और बेहतरीन गानों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी युवा साथियों ने सुना अपना युववाणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

सुगम संगीत प्रसारित होगा 7:45 पर और शास्त्रीय संगीत रात 10:30 पर।

ग्रामीण भाई अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 7 बजे। आज के इस कार्यक्रम में चर्चाएं होंगी जुलाई माह के कृषि कार्य, बागवानी व पशुपालन संबंधित कार्य विषय पर। साथ ही होंगी और भी लघु चर्चाएं जिनके विषय होंगे पशु टीकाकरण, विकसित भारत जी राम जी योजना, पक्के बिल का महत्व विषयों पर। साथ ही होगा लोक संगीत और बाजार भाव।

फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे संध्या 6:05 पर युगल गीत कार्यक्रम के अंतर्गत, और इसके अलावा फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 8:00, रात 9:15 पर और रात्रि 10:00।

हम आपको एक बार फिर से याद दिलवा दें, रात 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की

0: जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आज का ये कार्यक्रम है युगल गान। आज के इस युगल गान कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा की सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शिव हरि के पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के जन्मदिन के अवसर पर शिव हरि की इस जोड़ी के संगीतबद्ध कुछ युगल गीत।

ये था युगल गीत कार्यक्रम का पहला गीत। लता मंगेशकर और बाबला मेहता की आवाजों में इसे हमने लिया था आपके लिए फिल्म चांदनी से। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत रचना शिव हरि की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज संगीतकार जोड़ी शिव हरि के पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का जन्मदिन है। आज हम आपको सुनवा रहे हैं इसी जोड़ी के संगीत से सजे कुछ फिल्मी युगल गीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं फासले फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। शहरयार के बोल हैं और शिव हरि का संगीत। गीत आपको सुनवाए उससे पहले हम आपको बता दें कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म आज ही के दिन यानी कि 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था।

हरिप्रसाद चौरसिया के पिता पहलवान थे और उनका ये मन था कि हरिप्रसाद भी पहलवानी करे। लेकिन चौरसिया जी का रुझान हमेशा संगीत की तरफ रहा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: जी हाँ दोस्तों, इन 90 वर्षों में आपका और हमारा साथ बेमिसाल रहा और इसी साथ की बदौलत हम आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं। बहरहाल फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं संगीतकार जोड़ी शिव हरि के पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के जन्मदिन के अवसर पर इस जोड़ी के संगीतबद्ध कुछ फिल्मी गीत। ये है शिव हरि की संगीत जोड़ी से सजा फिल्म लम्हे का गीत।

दोस्तों, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने अपने पड़ोसी पंडित राजा राम से संगीत की बारीकियां सीखी और उसके बाद बांसुरी सीखने वे चले गए वाराणसी पंडित भोलानाथ प्रसन्ना के पास।

माता चौरसिया की तो संगीत में उत्कृष्टता हासिल करने की खोज उन्हें बाबा अलाउद्दीन खां की सुयोग्य पुत्री और शिष्या अन्नपूर्णा देवी की शरण में ले गया और उनसे उन्होंने संगीत को निखारा। और ये है शिवहरि के संगीत से सजा फिल्म डर का गीत, उदित नारायण, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में।

संगीत सीखने के बाद पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया। प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिवशंकर शर्मा के साथ मिलकर शिवहरि के नाम से ये संगीत जोड़ी खूब चली।

0: बात करें पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के पुरस्कारों और सम्मानों की, तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। 1992 में उनको पद्म भूषण और सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

यह है संगीतकार जोड़ी शिव हरि के संगीत से सजा फिल्म सिलसिला का युगल गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की। गीत रचना जावेद अख्तर की है।

0: ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो।
1: तो दोस्तों, ये था आज का फिल्म संगीत का युगल गीत कार्यक्रम। और आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए संगीतकार जोड़ी शिव हरि के पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के जन्मदिन के अवसर पर इस जोड़ी के संगीतबद्ध कुछ फिल्मी गीत। फिल्म सिलसिला के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का युगल गीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मरु चैनल है। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी और तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारों को बदलाव का सशक्त माध्यम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आबादी बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें जल्द पेश करने को कहा। और राज्य में मानसून के आगमन का काउंटडाउन शुरू, पूर्वी हिस्से से प्रवेश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि डिजिटल गवर्नेंस देश में बदलाव का सशक्त माध्यम बनी है। तकनीक के प्रभावी उपयोग से सरकारी योजनाओं में बिचौलियों का दखल खत्म हुआ है। श्री शर्मा आज जयपुर में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि DBT से हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है। राजस्थान में तकनीक को जनकल्याण का माध्यम बनाया जा रहा है।
3: राजस्थान में तकनीकी को जनकल्याण का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती, बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है। इसी सोच के साथ हमने राज्य में राजस्थान AI ML पॉलिसी 2026 लागू की है। इस नीति से AI का उपयोग प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से करने का आधार तैयार हुआ है।
2: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्मार्ट परियोजना, ई मित्र व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। इससे पहले श्री शर्मा ने तकनीकी सेवाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री शर्मा ने बताया कि राज्य को डेटा सेंटर क्षेत्र में 43,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें STT, GDC, HG एकाया, नायो बोल्ट सहित कई नामी कंपनियां शामिल है। प्रदेश के IT और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज तकनीकी नवाचारों से न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन की बात सार्थक हो रही है।
4: हर सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का महत्व है, और इसीलिए जो जनधन आधार और मोबाइल को जोड़ा गया उससे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके अंदर लीकेजेस खत्म हो।

0: आज यूपीआई जो पहले मजाक बनाया जाता था, आज यूपीआई गांव-गांव में हो रहा है। एक महीने के अंदर तकरीबन 23 बिलियन ट्रांजैक्शन से ज्यादा हो रहे हैं। कौन से नए तरीके अपनाए जा सकते जो दूसरे राज्यों में हो रहे हैं, उसे हम राजस्थान में करें, या राजस्थान के अंदर जो नए प्रयोग हो रहे हैं वो दूसरे राज्यों में करें। इस तरह का ये सेशन भारत को मजबूत करेगा, भारत के सुशासन को मजबूत करेगा और अंत में हर नागरिक को मजबूत करेगा।
1: राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से किया जा रहा है। सम्मेलन में कल विभिन्न प्लेनरी और ब्रेकआउट सत्र होंगे। इसके बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ समारोह का समापन होगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने राजधानी दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी है। बैठक के फैसलों की मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग को स्वीकृति दी गई है। इससे पश्चिम और दक्षिण दिल्ली के बीच संपर्क बेहतर होगा। इस पर 6,970 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे।
2: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे के मद्देनजर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। श्री मोदी बालोतरा के पचपदरा स्थित देश की पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड HPCL राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की सभी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। हमारे बालोतरा संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। दौरे को यादगार बनाने और हरित विकास की अलख जगाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जा रहा है।
3: 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां पचपदरा रिफाइनरी की सौगात देंगे, वहीं इस दिन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए जिले में वृहत स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। पौधरोपण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक नया संदेश देना है। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
1: जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज लोक मंथन 2026 के शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शिरकत कर रहे हैं। हम भारत के लोक थीम पर इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन इस साल दिसंबर महीने में होगा। ये आयोजन भारतीय ज्ञान परंपरा, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय चिंतन को समर्पित है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आबादी बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें जल्द पेश करने को कहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में समिति के साथ हुई बैठक में ये निर्देश दिए। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित समिति ने गृह मंत्री को बताया कि इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया जाएगा। साथ ही इस बारे में स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय होगा और विभिन्न मंत्रालयों के साथ भी विचार विमर्श किया जाएगा। समिति ने जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रश्नावली तैयार की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल उच्च स्तरीय जनसांख्यिकीय मिशन की घोषणा की थी। इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज खिलौना बैंक शुरू किए गए, साथ ही इन केंद्रों पर प्रवेशोत्सव और पौधरोपण के कार्यक्रम भी रखे गए। महिला और बाल विकास विभाग की शासन सचिव पूनम ने जयपुर के गौतम नगर आंगनबाड़ी केंद्र में खिलौना बैंक का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को प्रवेश किट भी वितरित किए। उधर नंद घर योजना के तहत पारंपरिक आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक किया जा रहा है। इसी कड़ी में पाली के महिला और बाल विकास अधिकारी प्रकाश पवार ने बताया कि जिले के 222 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर में बदलने का काम पूरा हो चुका है।

0: जिले में 222 मंदिरों का निर्माण किया गया है। बाला पेंटिंग, आरओ, एलईडी, भवन की मरम्मत, शौचालय संबंधी निर्माण आदि कार्य करवाए गए हैं। जो विभाग के लाभार्थी है, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको जो विभागीय सुविधा अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलना सुनिश्चित। अभी और भी इसमें प्रगति रहता है जिसमें और केंद्रों को भी नंदगढ़ में चयनित किया जा सकेगा।
1: जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर आज स्वायत्त शासन विभाग के सचिव और सफाई कर्मचारी यूनियन के बीच वार्ता हुई। इसमें यूनियन की कुछ मांगों पर सहमति बनी है। विभाग के सचिव रवि जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की ओर से कुछ मांगों पर सहमति के बावजूद सफाई संगठन अपनी अन्य मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में परंपरागत रूप से साफ सफाई का काम कर रहे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2: कि जो भी सफाई भर्ती होगी ये राजस्थान फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज रूल के अंतर्गत होगी, और इसके अंतर्गत हमने जैसे पिछली बार भी किया था कि जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता की बात लिखी थी 23 की भी भर्ती में, इसमें भी हम लिखेंगे। जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उसको प्राथमिकता देने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी 2-3 इश्यूज थे, उन सब इश्यूज को भी हमने टेकअप किया है।
1: सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने वार्ता को सकारात्मक बताते हुए कहा कि जल्दी ही हड़ताल समाप्त करने के बारे में औपचारिक निर्णय लिया जाएगा। राज्य में अगले 2 दिनों में मॉनसून के आगमन की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून राज्य के पूर्वी हिस्से से प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून के सक्रिय होने से कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 6 जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर भागों में बरसात शुरू होने की उम्मीद है। इस बार मॉनसून की दस्तक करीब 8 दिन देरी से होने की संभावना है। हालांकि विभाग ने इस बार जुलाई महीने में प्रदेश में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है। इस बीच मॉनसून के प्रवेश से पहले प्री मॉनसून गतिविधियां कुछ भागों में सक्रिय है। बीते 24 घंटों में कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम बरसात हुई। जैसलमेर में आज धूल भरी आंधी चली। भरतपुर में सुबह पानी बरसने के बाद दिन भर ठंडी हवाओं का दौर चला। राजधानी जयपुर में भी कुछ स्थानों पर आज छितराई हुई बारिश हुई। आज 24 जिलों में आंधी और बरसात की चेतावनी है। कल से 4 जुलाई के बीच बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज रफ्तार हवाएं और धूल भरी आंधी का अलर्ट बताया गया है। वहीं दूसरी ओर ज्यादातर हिस्सों में दिन भर तेज धूप और उमस का असर रहा। आज डॉक्टर्स डे है। महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। इस दिन चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के समर्पण, सेवा भावना और मानवता के प्रति योगदान का सम्मान किया जाता है। जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज की सह आचार्य डॉक्टर अदिति ने चिकित्सा पेशे को सेवा के साथ ही आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला बताया।
3: डॉक्टर्स डे के इस विशेष अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक लैब मेडिसिन डॉक्टर हूँ। आप हमसे अस्पताल में सीधे न मिलते हो, लेकिन आपकी जांच की हर रिपोर्ट के पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत, जिम्मेदारी और ईमानदारी होती है। जब किसी मरीज का सही समय पर सही निदान हो जाए, उसका इलाज शुरू हो जाए और वह स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट आए, यही हमारे काम की सबसे बड़ी संतुष्टि है। आज डॉक्टर्स डे पर मैं समाज से केवल एक छोटी सी अपील करना चाहती हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय पर जांच करवाएं, डॉक्टर्स की सलाह का पालन करें और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारों को बदलाव का सशक्त माध्यम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आबादी बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें जल्द पेश करने को कहा। और राज्य में मॉनसून के आगमन का काउंटडाउन शुरू, पूर्वी हिस्से से प्रवेश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख चिंतन जोशी ने तैयार किया है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 28 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पहले दिन जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों पर पोलियो बूथ स्थापित किए गए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा

0: पिलाई। चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि अभियान के दौरान हर पात्र बच्चे तक पहुंचने का प्रयास किया गया। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन लगातार जारी है। नगर परिषद क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में बिजली, पानी, सड़क, पट्टा वितरण, नाम परिवर्तन, आबादी, भूमि से जुड़े प्रकरणों सहित विभिन्न कार्यों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर देशल दान सहित प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं और आम जन की समस्याएं सुन रहे हैं। गलियाकोट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत डैयाणा में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जिला सांख्यिकी विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांख्यिकी के महत्व और विकास योजनाओं के निर्माण में आंकड़ों की भूमिका पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य की नीति निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार होते हैं। वनपाल भर्ती परीक्षा जिले में 34 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए थे और अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जांच की गई। प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से परीक्षा के सफल संचालन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के किसानों को 23वीं किस्त जारी की गई। कृषि विज्ञान केंद्र फलोज में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। कृषि विभाग के अनुसार जिले के 1,53,000 से अधिक किसानों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से राशि जमा की गई। खातों में राशि पहुंचने पर किसानों ने खुशी व्यक्त की। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने किसानों से संवाद करते हुए प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को भूमि की उर्वरता बनाए रखने, रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। आदिवासी अंचल की शिक्षा की प्रतीक शहीद वीर बाला कालीबाई का शहादत दिवस जिले भर में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। उनकी जन्मस्थली रास्तापाल सहित विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और बलिदान को याद किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती भी जिले भर में मनाई गई। विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में महाराणा प्रताप के त्याग, साहस और स्वाभिमान को याद किया गया। वक्ताओं ने युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय समारोह डूंगरपुर शहर के लक्ष्मण मैदान में हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन और सूचना तथा जनसंपर्क विभाग की ओर से विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी प्रदर्शित की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। जिले में पिछले दिनों प्री मॉनसून की अच्छी बारिश हुई। बारिश से तापमान में कमी आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि उमस का असर अभी भी बना हुआ है। मौसम में बदलाव के बाद किसानों में भी उत्साह देखा जा रहा है। किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुटने लगे हैं और अच्छी मानसूनी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। इसी के साथ डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारा ने बदलाव रो मजबूत जरियो बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा सारू तैयारियां जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आबादी बदलाव रा बारा माए बनाई जी आला दर्जारी समिति सिफारिशा बेगी देवन सारू कहो और राज्य में चौमासारी बिरखा बेगी सरूहे बन रहा आसार, उगनी हल्काओं बिरखा सरूहे बन रही संभावना। समाचार सागे मैं सुदर्श

0: नाहर। अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि डिजिटल गवर्नेंस देश में बदलाव रो मजबूत जरियो बनी है और तकनीक काम लेर सरकारी योजनावां में दलालान रो दखल खत्म भयो है। श्री शर्मा आज जयपुर में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन रा उद्घाटन समारोह में बोल रहा है। वे कहो कि डीबीटी उ हर योजना रो फायदो सीधो पात्र लोगों रा खाता में पूग रियो है।
1: राजस्थान में तकनीकी को जनकल्याण का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है। इसी सोच के साथ हमने राज्य में राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026 लागू की है। इस नीति से एआई का उपयोग प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से करने का आधार तैयार हुआ है।
0: मुख्यमंत्री ई मौके स्मार्ट परियोजना, ई मित्र व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज री शुरुआत कीनी। इनो पहली वह तकनीकी सेवाओं बारा माई लगाई जी प्रदर्शनी रो उद्घाटन कीनो और वन निरखी। ई पाछे श्री शर्मा उद्योगों नुमाइंदा सागे बातचीत कीनी। इस दौरान वे बतायो कि राज्य ने डेटा सेंटर हलका माए 43,000 करोड़ रुपये बत्ती रकम रा निवेश प्रस्ताव मिलिया है। आम आए एस टी टी जी डी सी एच जी एकाया अरनायो बोल्ट समेत कई नामी कंपनियां शामिल है। प्रदेश रा आई टी आर उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ कार्यक्रम माए वारा विचार बताया। खबर नवी सागे बातचीत करता थका राठौड़ कहो कि तकनीकी नवाचाराओं न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन री बात सांची वे रही है।
2: हर सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का महत्व है और इसीलिए जो जनधन आधार और मोबाइल को जोड़ा गया उससे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके अंदर लीकेजेस खत्म हो गए। आज यूपीआई जो पहले मजाक बनाया जाता था आज यूपीआई गांव-गांव में हो रहा है। एक महीने के अंदर तकरीबन 23 बिलियन ट्रांजेक्शन से ज्यादा हो रहे हैं। कौन से नए तरीके अपनाए जा सकते जो दूसरे राज्यों में हो रहे हैं उसे हम राजस्थान में करें या राजस्थान के अंदर जो नए प्रयोग हो रहे हैं वो दूसरे राज्यों में करें। इस तरह का ये सेशन भारत को मजबूत करेगा, भारत के सुशासन को मजबूत करेगा और अंत में हर नागरिक को मजबूत करेगा।
0: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राज्य सरकार का न्यू मिलर कराया जा रहा 2 दिन राई सम्मेलन रो मुद्दो विकसित भारत 2047 एआई एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस राखी चियो है। सम्मेलन में काल न्यारा न्यारा प्लेनरी और ब्रेकआउट सेशन रखा जावेला। ई पाछे केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार देवेला। केंद्रीय कैबिनेट राजधानी दिल्ली सारू खास परियोजना ने मंजूरी दीनी है। मीटिंग में करी गया फैसला री जानकारी देता थका केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बतायो कि 8 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग ने मंजूरी दी रही है। इनो आतुणी और लंकाऊ दिल्ली बीच जुड़ाव बेहतर वेला। ई काम में 6,970 करोड़ रुपये बत्ता खर्च करया जावेला।
3: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा न ध्यान रखता थका तैयारियां जोर शोर चल रही है। श्री मोदी रो बालोतरा रा पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड HPCL राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ने जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल रो ही उद्घाटन करेला। माणा बालोतरा खबर नवीस बतायो कि प्रधानमंत्री रा दौरा ने यादगार बनावण और हरित विकास रे अलख जगावण सारू मोटा पैमाना माथे पौधा रोप्या जा रहा है।
4: 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां पचपदरा रिफाइनरी की सौगात देंगे, वहीं इस दिन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए जिले में वृहत स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। पौधरोपण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है।

0: इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक नया संदेश देना है। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। इस आगे आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और वहां जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। गृहमंत्री अमित शाह आबादी बदलावां रा बारा माय बनाई ची आला दर्जारी समितियों सिफारिशां बेगी देवन सारू कहो है। वे आज नई दिल्ली माय समिति रा सदस्यां सागफी मीटिंग माय हुकम तीनो। समिति गृहमंत्री ने बतायो कि राज्यां और केंद्र रा राज वाला प्रदेशां रो दौरो कर अर ई बारा माय जानकारी हासिल करी जावेला। समिति जानकारी हासिल करण सारू प्रश्नावली बनाई है। ध्यान जोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लारला साल आला दर्जा रा जनसांख्यिकी मिशन रो ऐलान की नो हो जिन पाछे रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर री सदारत माय आ समिति बनाई ची ही। प्रदेश रा सगला आंगनवाड़ी केंद्र माय आज खिलौना बैंक शुरू करी चिया। इस आगे प्रवेशोत्सव और पौधारोपण रा कार्यक्रम ही राखी चिया। महिला और बाल विकास विभाग री शासन सचिव पूनम जयपुर रा गौतम नगर आंगनबाड़ी केंद्र माय खिलौना बैंक री शुरुआत कीनी। ई मौके बच्चा ने प्रवेश किट ई दिया चिया। नंद घर योजना रा तहत पारंपरिक आंगनबाड़ी केंद्र ने और बेहतर बनाया जा रहा है। पालीरा महिला और बाल विकास अधिकारी प्रकाश पंवार बतायो कि जिला रा 222 आंगनबाड़ी केंद्र ने नंद घर माय बदलीकरण रो काम पूरो वेक्यो है।
2: जिले में 222 मंदिरों का निर्माण किया गया है। बाला पेंटिंग, आरओ, एलईडी, भवन की मरम्मत, शौचालय संबंधी निर्माण आदि कार्य करवाए गए हैं। जो विभाग के लाभार्थी है, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको जो विभागीय सुविधा अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलना सुनिश्चित। अभी और भी इसमें प्रगति रहता है जिसमें और केंद्रों को भी नंदगर में चयनित किया जा सकेगा।
1: स्वायत्त शासन विभाग रा सचिव और सफाई कर्मचारी यूनियन रा नुमाइंदा बीच आज जयपुर माय बातचीत हुई। इन दौरान यूनियन री कुछ मांगा माथ एक राय बनी। विभाग रा सचिव रवि जैन खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका बतायो कि सरकार री ओर कुछ मांगा मान लिया पाछे सफाई कर्मचारियां रा संगठन दूजी मांगा न लेर अड़ रहा है। वह कहो कि सफाई कर्मचारियां री भर्ती माय मूल रूप साफ सफाई रो काम कर रहा लोगों ने प्राथमिकता दी जावेला।
3: कि जो भी सफाई भर्ती होगी ये राजस्थान फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज रूल के अंतर्गत होगी और इसके अंतर्गत हमने जैसे पिछली बार भी किया था कि जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता की बात लिखी थी 23 की भी भर्ती में, इसमें भी हम लिखेंगे। जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उसको प्राथमिकता देने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी 2-3 इश्यूज थे, उन सब इश्यूज को भी हमने टेकअप किया है।
1: सफाई कर्मचारी यूनियन रा अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया बातचीत ने सकारात्मक बताता था का कहो के सफाई कर्मचारियां री हड़ताल बेगी खत्म करन रे बारा माय फैसलो लियो जावेला। अरे बे मौसम, राज्य माय आवता 2 दिन माय चौमासा री बिरखा स्वरूप है वन रा आसार है। मौसम विभाग रे मुजब कोटा और उदयपुर संभाग रा कुछ हल्का माय भारी बारिश री संभावना है, जबकि 6 जुलाई तक प्रदेश रा घनखर हल्का माय में स्वरूप वन री संभावना है। ई साल चौमासा री बिरखा लारला साल री तुलना माय करीब 8 दिन मोड़ी स्वरूप वन रा आसार है। मौसम विभाग जुलाई महीना माय प्रदेश माय सामान्य कम बारिश वन रो अंदाजो लगायो है। ई बीच राज्य रा कुछ हल्का माय चौमासा पहले री हलचल चाल रही है। लारला 24 घंटा माय कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग माय थोड़ी घनी बिरखा भी। जैसलमेर माय आज आंधी चाली। भरतपुर माय संवारे भी बिरखा पाछे दिन भर सिलो बायरो बाजो। राजधानी जयपुर माय कठे कठे बारिश हुई। मौसम विभाग आज प्रदेश रा 24 जिला माय आंधी बारिश सारू चेतायो है। काल 4 जुलाई बीच बीकानेर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ माय जोरदार बायरो बाजन और आंधी चालन सारू चेताइचियो है। आज डॉक्टर्स डे है। महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल रा पहले वाला मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय री याद माय ओ दिन मनायो जावे है। ई दिन इलाज रा हल्का माय डॉक्टर रा समर्पण सेवा

0: भावना और इंसानियत रा प्रति योगदान रो मान करियो चावे है। जयपुर रा एसएमएस मेडिकल कॉलेज री एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अदिति इलाज रा पेशा न सेवा सागे खुद न संतुष्टि देवन वालो बतायो।
1: डॉक्टर्स डे के इस विशेष अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक लैब मेडिसिन डॉक्टर हूं। आप हमसे अस्पताल में सीधे ना मिलते हो, लेकिन आपकी जांच की हर रिपोर्ट के पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत, जिम्मेदारी और ईमानदारी होती है। जब किसी मरीज का सही समय पर सही निदान हो जाए, उसका इलाज शुरू हो जाए और वह स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट आए, यही हमारे काम की सबसे बड़ी संतुष्टि है। आज डॉक्टर्स डे पर मैं समाज से केवल एक छोटी सी अपील करना चाहती हूं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय पर जांच करवाएं, डॉक्टर्स की सलाह का पालन करें और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें।
0: आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार ने बदलाव रो मजबूत जरियो बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा सारो तैयारियां जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आबादी बदलावां रा बारा माय बनाई ची आला दर्जारी समितियों सिफारिशां बेगी देवण सारू कहो। और राज्य माय चौमासा री बिरखा बेगी सरूफे वन रा आसार। उगनी हलकाओं बिरखा सरूफे वन री संभावना। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मरु चैनल है। संध्या के 7 बज चुके हैं। अब ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम।

0: किसान भाई और श्रोताओं ने आपरे साथी दीवानदान रत्नु
1: और अश्विनी व्यास रा आज रा घना घना राम रा।
0: राम राम राम राम भाई अश्विनी के जुलाई रो महीनो चालू हो गयो है आज। और यहाँ देखे तो अपारे अषाढ़ रो महीनो भी चालू हो गयो।
1: बिल्कुल हिंदी हिसाब से देखो
0: हाँ अपारे अषाढ़ रो महीनो चालू हो गयो है। तो इन दिनारे में आ किसान भाइयों रे वास्ते सबू मोटी बात तो अश्विनी भाई आ है के अपा फसल रो जिको चुनाव है अपनी खेती खातर वो सावधानी पूर्वक करा। और क्योंकि अब बिरखा भी होने वाली है और ये भी समय आ गयो पानी में भी यदि अपा फसल रो बीजान करा तो भी समय है उपयुक्त समय है। और बारिश री पानी री जी के अपन चौमासे री फसल है बुनार वास्ते भी जोरदार है। क्योंकि हो सके देखो बारिश तो होवेला दो चार दिन बाद में बारिश बतौड़ी भी है। यदि बारिश होवेला तो किसान भैया अपन बहुत ही सावधानियों और ध्यान रखता तका जुलाई में जी की फसलों बुवाई करनी है बियानो चयन करनो है वो सावधानी पूर्वक करा ताकि आने वाले वक्त में अपन कहीं न कहीं फसल उत्पादन में फायदा मिले।
1: बिल्कुल दीवान भाई तेजियां बर्बाद कही के मास मानसून तो अब अपने द्वार पर ही खड़ो है। उमस मौसम में देखने मिल रही है धीरे धीरे अब बरसात आरा दौर भी शुरू हो सी चौखी बरसात हो सी। तो ये समय रे मायने किसान भाई आप रे खेतरी मिट्टी ने तैयार कर सके। लारली जी की तेज गर्मी पड़ी इन मायने मिट्टी रे मायने जिका सूक्ष्म पोषक तत्व है भी यानी बढ़ोतरी भी हुई और कोई फंगस या इस तरीके की चीजें जिकी फसल ने नुकसान पहुंचा वे भी तेज गर्मी से खत्म होगी।
0: हाँ कदी कदी देखो गर्मी ज्यादा पड़ी उड़ी भी फायदा हुए क्योंकि अपारे जिकी जमीन रे माथे कोई इन प्रकार जीव है जो अपार फसल ने नुकसान पहुंचावे तो वो खत्म हो गयो है। तो अब अपा गहरी जुताई कर परो अपनी फसल रो बीजान कर सके।
1: बिल्कुल तो अबार जी को समय दीवान भाई वो किसान भाई वास्तर बीज बोने रो निराई गुड़ाई और सिंचाई रे वास्तर जल निकासी प्रबंधन समय पर कर लेना है। क्योंकि जी मान लो तेज बरसात आई और खेत में कटी पानी ठहर तो वह मिट्टी कटी मरती

0: तो बीरी का यह कि पानी खेत सुखियां बांडे निकले, भाभी अगर व्यवस्था कर ले तो खेत पूरा तैयार हो जावे। और पछे कही है कि आजकल आप बात करा देखो कार्यक्रम में हमेशा कि उन्नत बीजा रो ही इस्तेमाल खेती में करियो जावे और परंपरागत विद्या नहीं अपनायो जावे, तो आ निराई है, गुड़ाई है, जलरी निकासी है और कठे अगर पानी घणो बेलो हो रहा है और आप मान लो 5-7 किसान भाई हाँ, तो आप भी बरसात रहे पानी ने जमीन में भेजन रहे वास्ते वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जिका आजकल बहुत सुनने में आया करे, तो वे भी आप स्थापित कर सका तो भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से बरसात रोज को बेसी अतिरिक्त पानी है वो जमीन रहे मायने चलो जैसी अपना खेत जी का बे सुरक्षित रहसी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और यदि अपन एक और है कि बारिश री मो अबार जो को अपा सीजन है बी सीजन रे मया बाजरे री भी वही चल रही है, तो मैं कहूँ अश्विनी भाई किसान भैया ने बाजरो अपन ने जरूर विजय करना चाहिए। आप पश्चिम राजस्थान में रहने वाला है, मोटो अनाज है बाजरो, यदि आप बाजरे री विजय कराला और बजी विजय हुएला तो ही अपारे थाली तक बाजरो पहुंचेला। बाजरे री विजय जरूर करा, चाहे बरसात हो तो बीहू करो चाहे आप पानी लगार करो, बाजरे री बीजान जरूर करा क्योंकि अब आर बखत है बाजरे री बीजई रो।
0: बिल्कुल दीवान भाई, बाजरे री बात आप हमेशा कार्यक्रम में मोटे दान रे रूप में श्री अन्न रूप में कर्या करा, लेकिन थाने एक बात बताऊं स्वास्थ्य ने तो वो लाभ पहुंचा ये सागे सागे अब बाजार रे मायने बाजरे रा भाव भी बढ़ गया। बहुत थोड़े समय पहला 2-4 साल पहला जिको आप 20-25 रुपया किलो बाजरो लिया करता था, अभी की कीमत 30-40 रुपया रे आसपास हो गई।
1: अब कदी कदी अपारी बीकानेर क्षेत्री बाजरी है 50 रुपया को
0: बिल्कुल
1: तक होगी,
0: बरानी जी के ना
1: बरानी बरानी बाजरी
0: बहुत कीमत। किसान भाई ने भी बाजरी रे उत्पादन रा चोखा दाम मिले
1: चोखा
0: ज्यादा से ज्यादा ही उत्पादन होना चाहिए
1: होना चाहिए। और बाजरी भी जान रहे साथ साथ है, दानरी भी जान रहे साथ साथ, दलन तिलन भी जान रखा क्योंकि अब आर खरीफ की फसल में प्रमुख रूप हूँ विजयी हुए। और साथ ही साथ है जी की देखो बागवानी के रूप में भी अपा फसल कुछ एडी जी की फसल है जी की अपार सब्जियां रे में है बीरू भी ध्यान रखा ताकि अबार चौमासे रे में बीरू उत्पादन बढ़िया बढ़िया हो सके।
0: बिल्कुल दीवान भाई बहुत चोखी जानकारी थे दी किसान भाई वास्तर, लेकिन अब देखो कार्यक्रम ने आप शुरू करा सुना पहलड़ो लोकगीत
1: बिल्कुल

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और शिक्षा, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा एक जरूरी किरदार निभाती है। यह लोगों को जागरूक बनाती है और सस्ता संवेदनशील जीवन जीने का तरीका सिखाती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन खुद भी शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। तूफान, बाढ़ या अन्य बुरे मौसम के कारण स्कूल बंद हो जाते हैं और कई बार बच्चों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, जिस वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। गरीबी और बढ़ती है और कई बार बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। इसलिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि हम क्लाइमेट के असर का सामना कर सके। क्या आप जानते हैं, 2019 में दुनिया भर के सिर्फ 53% युवाओं ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: अश्विनी, बढ़िया गीत सुना दियो आप श्रोताओं ने। हैं पहलो गीत सीमा मिश्रा रहो और आप थोड़ी चर्चा करा, फिर बाद में आगे और गीत सुना वाला बढ़िया सीख। बस अब चर्चा है अपारे पशु टीकाकरण, क्योंकि निश्चित रूप का किसान भाई है वह पशुधन जुड़ा है और बारिश और मौसम एक एडो मौसम है अश्विनी भाई के इन वक्त में किसान भाई ने सगड़ों ज्यादा सार संभाली जरूरत है तो मान के साथ साथ पशुधन रही है।
3: बिल्कुल,
2: क्योंकि अपा कदी कदी अपर परिवार हो तो राखनी पड़ सी, अपन राखा भी हाँ लेकिन पशुधन रो अपा इग्नोर कर ला, बिरो ध्यान नहीं रखा क्योंकि हमारा दुधारू पशु है, हमारे रोजी रोटी जुड़ा है तो दुधारू पशु रे कदी कदी एड़ा एड़ी बीमारी लाग जावे जिको अपारो पशु हाथ धोनो पड़ जावे। हाथ धोनो मतलब वो पशु जो लंगड़ा बुखार है साहब, तीन दिन में खत्म है पशु है। तो एड़ी बीमारियां है जिकी आज रे वक्त में, पिछली बार भी एक लंपी बीमारी आई है बा इन्हीं प्रकार की बीमारी ही जिको लाइलाज जाओ कोई बीमारी को नहीं। तो इन लाइलाज जिका ज्या लंपी है, रोग है, लंगड़ा बुखार है, इनरो तो एक ही उपाय है सा, आप टीकाकरण कराओ।
3: बिल्कुल, क्या नहीं? बिल्कुल दीवान भाई, ते जिया टीकाकरण की बात की तो जो लंगड़ा बुखार है इरो बरसात सु पहला टीकाकरण हो मई जून रे महीना पर टीकाकरण करिया करा, तो इरे टीकाकरण कराने सु मांसपेशियां में सूजन और लंगड़ेपन आने रो बचाव समय सु
2: पहला हो सके।
3: यार यार पशुआ रे मायने जिका पशुपालक भाई पशु राखे है बियाने ठा है कि गल घोटो जिसो भी एक रोग होया करे फिर भी वर्ष में दो बार टीकाकरण होवे और अगर आप समय पर टीको लगा लेवा तो पशुआ में गले में सूजन सांस लेने की तकलीफ सु बचाव ए दोनों हो जावे।
2: एक और चौमासे में होया करे मुहारडो जिके ने बोले आपा तो वो भी मूर में छाला आ जावे तो खुरपका मुंहपका रोग, तो बिनरो भी अपा टीकाकरण चौमासे हूं पहला करावा क्योंकि वो कहीं है हरियो घास खाणो बिरी रोग होने की संभावना ज्यादा हुए।
3: और ई खुरपका मुंहपका ने रो भी टीकाकरण अपा वर्ष में दो बार कराणो है, छह छह महीने रे अंतराल सु
2: अंतराल
3: फिर बरसात रे मायने और बरसात रे बीच रे मायने ब्रुसेलोसिस नाम रो भी एक रोग है जिके रे मायने भी 408 महीने री बच्चिया रे मायने केवल एक बार टीकाकरण कराना होवे
2: छोटे बच्चे
3: और एंथ्रेस एक रोग है जिकर अगर आप समय पर टीकाकरण करवा लेवा तो अचानक मृत्यु सु आपा पशुआ ने रोक सका। और एंथ्रेस रो टीकाकरण जिको है वो भी बरसात रे शुरू होने सु पहला होवे है तो आपने समय पर पशुआ ने जिका भी टीकाकरण आवश्यक है डॉक्टर साहब से बात कर और वे टीकाकरण करवा लेना है ताकि पशुपालक भाई जी का है वे पशुआ पर
2: बिल्कुल पशुआ संबंधित जागरूक रहे, पशुआ ने कोई बीमारी नहीं लागे, अपारे कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुए क्योंकि कदी कदी पशुआ माते परेशानी होने अपा पुरुष परिवार परेशान हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि दूध री कमी हो जाए, दूध कमी हो जाए तो अपने रोजमर्रा जी जुड़ी चीज है वह बिल्कुल अपने गड़बड़ हो जाए। कदी कदी वो पशु है दो दो तीन तीन महीने तक सही नहीं हुए हरिया पशु भाई, कदी कदी खुदान का वो पशु खराब भी हो जाए अपार हाथों निकल जाए, पर इन खातर जरूरी वही है कि बखत माते पशु टीकाकरण कराओ
3: करवा लेना चाहिए। अब दीवान भाई आप सुन सा कार्यक्रम में अगलो लोकगीत
2: लोसा गोरमंद समंदर खान और सत्तार खान रगाड़ो सुना लोकगीत।

0: मैं आकाशवाणी हूँ। 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना।
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: अश्विनी भाई गोरबंद समुद्र खान और सतार खान रो गौड़ो गीत लो सुनियो और फिर बाद में सुनिया है जरूरी संदेश। देखो अश्विनी किसान भाई है वो निरंतर आप रो खेती बाड़ी जुड़ियुड़ो रहे है, काम काज करे है, खेती बाड़ी रे साथ साथ पशु धनु जुड़ियुड़ो रहे है, फिर भी आप रे गाँव रे माया बिने रोजगार मिले है और रोजगार मिले है इर मतलब ओ है कि किसान री पूरी परवाह कर रही है अपारे भारत सरकार, भारत सरकार की तरफ किसान वास्ते रोजगार उपलब्ध है और इन उपलब्धारों जीतो जाओ तो जो उदाहरण है वो है जी राम जी।
2: बिल्कुल दीवान भाई थे बात बिल्कुल सही कही कि भारत सरकार देश रहे हर नागरिक वास्ते सोच रही है चाहे वो किसान है और चाहे वो किसान नहीं है। तो जिया पहला चलिया मनरेगा चलिया करतो थो अपने गाँव रे मायने, अब बीरो नाम सरकार बीरो नाम ही बदल दियो।
1: बिल्कुल बीरो एक नाम चेंज हो है और नाम रे साथ है एक नई तकनीक किसान बयान ज्यादा ही ज्यादा फायदो ही दीरी जो है कि नाम रे भी चेंज हो विकसित जी राम जी नाम है आज विकसित भारत बनाने वास्ते अपन माननीय प्रधानमंत्री जी जी को मुख्य उद्देश्य है बीरे उद्देश्य ने देखता तका भारत ने विकसित बनाने खातर अपन इन मनरेगा ने आलिजमो पहना और एक नए रूप लियो है भी मैं अपने फायदो ही है क्योंकि 100 दिन रोजगार है जगह अपने 125 दिन रोजगार भी मिल रही है।
2: बिल्कुल दीवान भाई बात थे बिल्कुल सही कही कि वीबी जी राम जी नाम रखे गए वीबी रो मतलब कई लोग आ समझे कि नरेगा रो नाम तो समझ में आता तो वीबी रो जिया थे बात बताई कि अब ओ विकसित भारत रे नाम सो चाल सी तो विकसित भारत रो जद ही हो पासी जद अपनो अंतिम पंक्ति पर बैठो व्यक्ति लाभ उठा सके तो इरे वास्ते सरकार सोचो कि जिके आदमी ने काम नहीं है तो वो सरकार से मांग कर सके रोजगारी गारंटी रो और बीरो वो ही काम वीबी जी राम जी ने मायने हो सी। पहला आ रोजगारी गारंटी लोग 100 दिन री मांगता और अब लोगों रो अधिकारी में 25 दिन सरकार द्वारा और बढ़ा दियो गयो तो अब आपने अंतिम पंक्ति पर बैठो गरीब व्यक्ति जी को है वो 125 दिन साल रे मायने सरकार से रोजगारी मांग कर सके और सरकार बिना रोजगार दे सी
1: उपलब्ध करा सके।
2: सागे सागे दीवान भाई एक बात थाने में और बताऊं कि ई योजना रे मायने खाली दिन को नहीं बढ़ाया गया
1: बिल्कुल
2: जिको आपानो गरीब व्यक्ति रोजगार पावे बिरी मजदूरी में भी बढ़ोतरी सरकार द्वारा करी गई है। इरे मायने मजदूर ने 300 रुपया प्रतिदिन रे हिसाब से मजदूरी दी जासी जिकी सरकार द्वारा तय की गई है और औसत दैनिक मजदूरी जिकी पहला 298 रुपया 8 पैसा थी वह अब बढ़ पड़ी और प्रति व्यक्ति 327 रुपया और 4 पैसा होगी तो गरीब व्यक्ति ने ई योजना में जुड़ बहुत ज्यादा लाभ
1: मिले और आ जिकी वर्दी है यारी पैसा बढ़ोतरी बा समय समय पर बकत बकत पर और भी आगे बढ़ती रहेला वार्षिक रह साबू और साथे इमें एडो सिस्टम भी पैदा कर दियो कि आप ये विकसित जी राम जी रमाया कोई तो भ्रष्टाचार नहीं वेला क्योंकि पहला भ्रष्टाचार हो तो सरकार ने इन प्रकारों कदम उठानो पड़ियो क्योंकि भ्रष्टाचार होने रे वजह एक गरीब आदमी ने जठे रोजगार मिले है भी रोजगार में कटी कटी असुविधा ही अब एक तो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच है बीरे सीधो जिको फायदो है बीरे अकाउंट में सीधा बीरे पैसा जावे और बीरे मजदूरी है बा 15 दिन रे अंदर अंदर बिने मिल जावे आपरे खाते रे मया और साथे साथे मतलब पारदर्शिता इतनी है कि यदि वो मजदूर आप रो बठे जी राम जी रमे बटजार मजदूरी करेला तो बीरो सत्यापन हुएला फोटो सत्यापन हो परो और बीरो मतलब बीरी हाजरी बा ऑटोमेटिक सत्यापन हो परो

0: एरबीर में स्टॉल में अंदराज हो जाए।
1: वाह दीवान भाई, बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन साथ साथ एक बात और ही मैं जोड़ दूं कि अगर मान लो आप रोजगार प्राप्त कर चुके हैं पहला, और अपने आस पास ऐसा कोई व्यक्ति है जो कोई रोजगारी जानकारी नहीं है, वो रोजगार नहीं जुड़े, तो बिना आप जरूर इशू जोड़ा ताकि वो साल में कम से कम 125 दिन रोजगार प्राप्त कर सके और आप गरीब परिवार ने चला सके, आप छोटी मोटी जिकी आजीविका बिना चला सके। और अब इरमा ने काम भी बढ़ा दिया, पहला जिका काम था भी काम मारे तुलना में अब जिका काम है भी बढ़ोतरी हुई है, तो बहुत सारा काम मौजूद है और सगला ने ये लाभ मिल सके है। जरूरत है कि आप गाँव में आस पास डाणी में रहने वाला लोग जानकारी देवा और ज्यादा से ज्यादा में जोड़ा। लेकिन दीवान भाई अब आप कार्यक्रम में सुन सा अगलो लोक गीत।

अभी ग्रामीण भाइयों ने सुना अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 7:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत।

सुगम संगीत कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रूप में अभी आपने सुना शोभना राव केशवर में ये मीरा भजन। आइए अब सुनते हैं पुष्पा हंस के स्वर में कबीर की ये भक्ति रचना।

पुष्पा हंस के स्वर में गाई कबीर की इस भक्ति रचना के बाद सुगम संगीत कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये मेरा भजन। ये एक होली के अवसर पर गाया जाने वाला भजन है।

अनुराधा पौडवाल के स्वर में गाए इस मीरा भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। श्रोतों, आज भारतीय हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक सुदेश भोंसले का जन्मदिन है। इस अवसर पर आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं इनके गाए कुछ फिल्मी गीत।

ये था कुमार सानू, सुदेश भोसले, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक की आवाज़ों में आंखें फिल्म का गीत। गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार बप्पी लहरी। कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले की आवाज़ों में सौदागर फिल्म का ये गीत।

0: दिले।
1: कत्ल क्या था और कातिल कौन था ये हमसे ज्यादा तुम जानते हो, और रही इतिहास की बात, ये ठाकुर राजेश्वर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक, सुदेश भोसले और विनोद कुमार राठौड़ के साथ साथियों की आवाजों में डर फिल्म का ये गीत।

0: राधा मैं कान्हा।
1: ना ना ना ना।
0: क्या?
1: बिजली और बादल,
0: तुम दोनों पागल
1: है, खूब ये जोड़ी,
0: बस देर है थोड़ी,
1: तुम जीवन साथी,
2: हम सब बाराती,
1: रंगों की डोली
0: ले आई होली,
1: भर लो पिचकारी,

0: भूला रास्ता,
1: रास्ते पे आ जा।
0: मैं थाम लूं भैया,
1: मत छेड़ो सैया।
0: तुम दिल मत तोड़ो,
1: तुम आंचल छोड़ो।
0: तुम काहे रूठी,
1: मेरी चूड़ी टूटी,
0: दिल मेरा टूटा।
1: चल हट जा झूठा,
0: तू नाच में गाऊं,
1: तू बैठ में जाऊं।
0: मुश्किल है जाना,
1: तू है दीवाना।
2: मुझे अंग लगा ले,
1: बस रंग लगा ले।
0: नीला के पीला,
1: नीला ना पीला।
0: क्या लाल गुलाबी,
1: तू बोलो भाई।

गायक कलाकार सुदेश भोसले के जन्मदिन के अवसर पर हम आपको सुनवा रहे हैं उनके गाए कुछ फिल्मी गीत। और अब सुनिए वीरू दादा फिल्म का ये गीत सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। दोस्तों, सुदेश भोसले का जन्म आज ही के दिन यानी कि 1 जुलाई 1960 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था।

संगीत कार्यक्रम में भारतीय हिंदी सिनेमा के पार्श्व गायक सुदेश भोंसले के जन्मदिन के अवसर पर हमने आपको सुनवाए उनके गाए कुछ फिल्मी गीत। फिल्म मेजर साहब के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं लोक संगीत।

अभी आपने सुना अभय सिंह गहलोत के स्वर में ये लोकगीत। कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए पद्मा व्यास का गाया दल बादली बीच चमके ये लोकगीत। इनके साथ ढोलक पर संगतकार हैं पूनम चंद दिधारा।

पद्मा व्यास के स्वर में गाए इस लोकगीत के बाद लोक संगीत कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं धीरा सेन के स्वर में ये लोकगीत।

0: धीरा सेन के स्वर में गई इस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज 8:09 रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी है। एक रिपोर्ट।
3: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में VBG रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, VBG रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर

0: गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट डब्ल्यू

0: पर newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए

0: नागरिकों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: श्रोताओं, आज का दिन राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी ही बदौलत हम तक पहुंचते हैं हमारी डाक।
1: खत नहीं लिखेंगे।
2: खत नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
1: बस जल्दी।

किशोर कुमार की आवाज में ये था पलकों की छांव में फिल्म का गीत, और ये है कार्यक्रम का अगला गीत। ये गाना भी राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसको समर्पित है।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में आप सुन रहे हैं श्री 420 फिल्म का गीत। आप इस गीत को कभी देखिएगा और पता कीजिएगा कि ये राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में क्यों शामिल किया गया है।

कार्यक्रम का अगला गीत डॉक्टर दिवस के नाम। जीवन दान देने वाले डॉक्टरों के नाम। भगवान के दूसरे रूप में जाने वाले डॉक्टरों के नाम। सोनू निगम की आवाज, कल हो न हो फिल्म का ये शीर्षक गीत।

कार्यक्रम का आखिरी गीत वन महोत्सव सप्ताह के नाम। कुमार सानू और हेमा सचदेवा की आवाजों में बीवी नंबर वन फिल्म का ये गीत। कुमार सानू और हेमा सरदेसाई की आवाजों में बीवी नंबर वन फिल्म का ये गीत।

0: मिनट होने वाले हैं। अब चर्चा का विषय है कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।
1: चर्चा का विषय है ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष AI सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं AI विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और AI एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे AI सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो AI एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्वागत है आपका।
3: नमस्कार।
2: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं AI एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार जी।
2: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
4: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा UPI जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे हैं कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे AI हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये 11 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
2: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
3: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूँगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो UPI है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटाइजेशन, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनारियो हमने क्रिएट किया है।
2: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
5: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
2: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
3: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशंस हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी है अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
2: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
4: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल

तो ये था आज का फिल्म संगीत। आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, डॉक्टर दिवस और वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर हमने आपको सुनवाए इनसे जुड़े कुछ फिल्मी गीत। और फिल्म बीवी नंबर वन के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 9:30

0: कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक, तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा। हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ कर किस चीज को किया?
2: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया उसके ऊपर, चाहे वो सरकारी सुविधाएं हों या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट, एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, CSC की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
2: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब AI इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें AI से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ 2 ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था US ओरिएंटेड, जिसको हम GAFAM बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं दूसरा, और तीसरा अब हमारा है भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम अडॉप्ट कर रहे हैं? आपने AI का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी AI को बड़ी तेजी से अडॉप्ट कर रहा है।
2: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप QR कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पे एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी AI है। वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी AI का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने AI बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि भी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर से उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से GPU प्रोवाइड करा जो सबसे सस्ता है
1: जी।
2: पूरे विश्व में वो MSMEs और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो AI कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो LLMs या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनको भारत यहाँ ला रहा है।
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर

0: हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
1: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें है, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर के मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया, लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स का, मैं अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हूँ या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हूँ, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का अभी पुसुम जी ने बात किया कि एआई कोशा में जो सब्सिडाइज रेट में जीपीयूस दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
0: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि MyGov जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
1: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है, सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है MyGov आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
0: प्रसून जी, उमंग, GSTN, पोषण ट्रैकर और PM गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
2: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और एनेबलमेंट चाहिए थी। हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है। इवन जो आपको सर्टिफिकेशन, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें आप आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और MSME को।
0: जी उत्पल,

0: जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
1: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब भी हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल स्टैब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया।
0: जी
1: सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा आरबीआई का एंड हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है, कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग का बोलते हैं कि
0: जी
1: बहुत ही इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर से। और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है, कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे, जो कुछ भी
0: जी
1: करप्शन ये सब है, वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है। तो मैं भी सहमत हूं उनसे।
0: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
2: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर इस डिजाइन को, इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर है, तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
0: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है। तो आईटी, एआई, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, एआई, सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है, उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट, वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने, वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवर्निटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए, तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू, वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं। उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है, और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है, वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड

0: एस्पेक्ट में, हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड
1: हो रही है। कर रहे हैं हम
0: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी MOU साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए, तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं, तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है, इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
2: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है, उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए है, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, AI में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन AI का बात कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ सेक्टर्स हो, तो ये सब में सोवरेन AI का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है, उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है, ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये AI के साथ कॉन्वर्ज होगा, मतलब AI के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा, जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए, तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है, ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाय प्रोडक्ट है पॉलिसीज, आप जो भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही है?
2: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया, अभी AI के लिए भी हम लोग को GPU चाहिए। अभी GPU अगर जो देखा जाए तो 2-3 कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है, उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुद का GPU चाहिए, हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है, वो सब वो फैब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो AI तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो GPU पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है, और इसको आगे लेके जाए, और ये इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, तो सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी, अब प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पे जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती है कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
0: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफ़ी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज़ किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि OTP शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजैक्शंस या SMS या वॉइस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं, मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज़ करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हमने भी एक IITs के थ्रू MSMEs को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उस

0: में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ONDC जैसी पहल हो या फिर GEM जिसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहल हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए, पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहाँ पे उन प्रोडक्ट्स के जो MSMEs हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ONDC पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए, हमारी सरकार ने मल्टीपल FTA साइन करे हैं, अब ONDC के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए, सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ FTA कर रही है, और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले GST हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि GST जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी, या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
0: जी, टैक्सेशन और खासकर MSMEs को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम, एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो MSME हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे आप पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हो, क्योंकि अगर हमारे MSME के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं FTA के थ्रू बेचने हैं, तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार एंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को, और एग्री स्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव है, हम लोगों को अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा, हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे, और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग देख रहे। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है, और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है, और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर, जो आपने बात किया उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो कि एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई AI, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, AI, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे AI विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और AI एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: चर्चा का विषय है।

चर्चा का विषय है कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। दोस्तों, आपने फिल्मों में विभिन्न शीर्षकों से संबंधित फिल्मी गीत सुने होंगे, लेकिन आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम में हम आपको वे गीत सुनवा रहे हैं जिनमें कोई छोटी सी कहानी भी है जो बयां होती हुई नजर आती है। तो चलते हैं कहानियों के सफर में आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल के संग।

कार्यक्रम का ये पहला गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम था गुमराह। कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जिसमें है कहानी।

और इस गीत में है कहानी जंगल की और जंगल के जीवों की। अमिताभ बच्चन, मास्टर रवि और साथियों की आवाजों में यह है मिस्टर नटवरलाल फिल्म का गीत।

0: सुनो, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है,
1: क्यों हो गए?
0: भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में,

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

0: खा गया, लेकिन आप तो जिंदा है।
1: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ
2: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में ये है जब जब फूल खिले फिल्म का गीत। आनंद बख्शी की गीत रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत रचना।
1: फिर क्या हुआ?

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से आप सुन रहे हैं वो गीत जिनमें है कहानियां। कहानियां भरे गीत।

कार्यक्रम के आखिर में एक हसीना की कहानी। फिल्म कर्ज से आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।

दोस्तों, आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल का हमेशा प्रयास रहता है नवीनता के साथ फिल्म संगीत। और आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में हमने आपको ऐसा ही करके दिखाया। आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में हमने आपको वे गीत सुनवाए जिनमें छिपी थी छोटी छोटी कहानियां। फिल्म कर्ज के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट का मोहन वीणा पर बजाया राग श्याम कल्याण।

0: बात एक रात की फिल्म से हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाज में अभी आपने गीत सुना। इसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और इसका संगीत भी दिया था हेमंत कुमार ने ही। और साथियों, इसी के साथ प्यार भरे नगमों की इस पेशकश को आज यहीं विराम देना होगा, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।
1: पंडित विश्व मोहन भट्ट की मोहन वीणा पर बजाई इस राग श्याम कल्याण के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार।

दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6

0: लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH 148 AE connected.

0: And in men's cricket, India were 124 in 13.3 overs against England in the first T20 international of the five-match series at the Riverside Ground in Chester Street when reports last came in. Earlier, Indian skipper Shreyas Iyer won the toss and opted to bat first. Spinners Varun Chakravarti and Ravi Bishnoi have returned to the playing 11 for India, while Vaibhav Suryavanshi has been kept on bench. The men in blue will look to bounce back from the shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. And that is the end of this news bulletin.
1: Medium wave 215.05 meter, अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारणों की ये संध्याकालीन और अंतिम सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये प्रोग्राम हमारे डीआरएम चैनल 1386 किलोहर्ट्ज़ पर भी उपलब्ध थे। कल प्रातः 5:53 पर कल के प्रसारणों की पहली सभा के साथ